नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 20, तदनुसार 10 जून सन 2026। सुबह के 5:58:35 होते हैं। इसी के साथ अब हमारे आज के प्रसारण शुरू होते हैं। प्रातःकालीन सेवा में हम अपने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर की पहचान सेवा से होगी, यह मानकर मैंने सेवा धर्म स्वीकार किया था। ये कथन है महात्मा गांधी के।

धन जोड़कर भक्ति का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मन में वासना और बढ़ती जाएगी। जिनका चित्त वासनाओं में फंसा हुआ है, उन्हें अंतरात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं।

जिन मनुष्यों के हृदय में वास्तविक मालिक प्रभु बसा हुआ है, उनके सारे दुखों का इलाज वह स्वयं बन जाता है, क्योंकि वह सभी विकारों को हृदय से धोकर निकाल देता है जहां वह बस रहा है। ये कथन है गुरु नानक देव की।

अभी आप सुन रहे थे वंदना FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस कांड। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

शूर्पणखा जैसी राक्षसी, कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई, पिता, पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें। तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खर दूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और स्वर दिया था लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और रामकृष्ण चंदेश्वरी ने। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ,
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

श्रोताओं, आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी है और तिथि है 10 जून 2026 और दिन बुधवार। अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 5 में श्लोक 20 से 22 तक की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे श्री सोमनाथ शर्मा। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम अन्नदाता होगा शाम 6:30 पर और 7 बजे ग्राम संसार। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:05 पर। शाम 7:30 पर हम लेकर आएंगे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान। गैर फिल्मी गीतों का गुलदस्ता आपके लिए होगा शाम 7:45 पर। और जानकारी व रोचक विषयों के साथ सुनिएगा कुछ बातें कुछ गीत रात 8 बजे।

चांदनी रातें। इस कार्यक्रम में आपके व्हाट्सएप से भेजे गए गीतों की फरमाइश हम सुनवाएंगे रात 10 बजे। सुबह 10 बजे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक मुलाकात देवराज सिरोहीवाल के साथ। सुनना न भूलें आज सुबह 10 बजे। और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आपकी फरमाइश के गीत, आपकी पसंद के गाने, जो सुनने के लिए आप हमें फ़ोन करें 017-44-221-322 पर। सुबह सवेरे कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आज सुबह 8:30 पर। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम स्वरांजलि में आज सुबह 9:30 पर। बाजाए नगाड़ा, इस कार्यक्रम में लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे आज सुबह 7:40 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
1: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
1: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
1: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता

0: से समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: है। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओह,
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची

0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। बाजाए नगाड़ा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को राजीव धीमान का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको अभी सुनवा रहे हैं ज्ञानचंद वर्मा के गाए हरियाणवी लोकगीत।

के हरी भजन से प्रीत, मन से ले दसों इंद्रियां जीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: इसी गीत के साथ आज का बाजाए नगाड़ा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने दोस्त राजीव धीमान को इजाजत। आज के हमारे गायक कलाकार थे ज्ञानचंद वर्मा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
8: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
9: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
8: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
10: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
4: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
11: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
4: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
13: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as the world's fastest-growing major economy, concluded major trade agreements with leading economies and emerged as a more influential voice on global issues including development, technology, climate action and the priorities of the global south. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
12: World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister of the country. We have a report.
14: World leaders have hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anuradha Kumar Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. He also highlighted India's remarkable economic and social transformation and noted that Prime Minister Modi's vision vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
15: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. India remains a friend of Papua New Guinea. You personally have come here. I give respect to you as a senior leader of the Global South, and I am happy that you have now a whole record as the longest serving Prime Minister.

कार्यक्रम के तमाम दोस्तों को राजीव धीमान का नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में क्या है, इसके लिए आपको कार्यक्रम सुनना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एक घंटे तक। आपका मनोरंजन करेंगे, आपको प्रश्न बताएंगे और आपको गाने भी सुनवाएंगे।

दोस्तों, इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है। हमें इतिहास ये बताता है कि हम पुराने समय में कैसे थे, हमारा खान पान क्या था और हमारी खेलने की चीज़ें क्या हुआ करती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू से ही चलती आ रही हैं और आज तक मतलब हमारे साथ मौजूद हैं। इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी घटनाएँ हैं जो चलती आ रही हैं और कुछ घटनाएँ ऐसी हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दर्ज हो चुकी हैं। तो अगर ये बात इतिहास की हो रही है तो आज का प्रश्न भी कुछ उससे जुड़ा हुआ, मिलता जुलता वर्तमान परिवेश और इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और रेडियो के पास आ जाइए। जो श्रोता हमारे फोन से सुन रहे हैं वो कानों की लीड को थोड़ा सा अच्छी तरह से लगा लें। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया किस राज्य में खोजी गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया किस राज्य में खोजी गई है? आपको बताना है उस राज्य का नाम और आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं 8:45 तक हमारे केंद्र के दूरभाष नंबर 94660 21336 पर। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा कि एक संदेश में तीन नाम से ज्यादा नाम मत भेजिएगा। प्रश्न का जवाब, अपने नाम, अपनी जगह का नाम और समय आपके पास रहेगा 8:45 तक। समय सीमा के भीतर अगर आप संदेश भेजते हैं तो आपके संदेश कार्यक्रम में शामिल जरूर होंगे।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मंगल भवन मंगल हारी,
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
6: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
7: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
8: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में योग का एक मजबूत और व्यवस्थित नेटवर्क मौजूद है, जिसमें सरकारी योगशालाएं, योग एवं व्यायामशालाएं, निजी योग केंद्र और विश्वविद्यालय स्तर के योग संस्थान शामिल हैं। राज्य सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में योग मुक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत योगशालाओं का संचालन हो रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 6,500 से अधिक गांवों में योगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जहां प्रमाणित योग सहायक नागरिकों को निशुल्क प्रशिक्षण देंगे। आपको बता दें कि इन सरकारी केंद्रों को स्थानीय पार्कों या कम्युनिटी सेंटर से जोड़ा गया है, जिसमें जिले जो हैं वो हैं पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हिसार, रोहतक और जींद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकारी योग एवं व्यायामशालाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। आपको बता दें कि जो मतलब बहुत सारी योगशालाएं हैं और योग करने से आपको कल भी हमने कार्यक्रम में बताया था कि बहुत फायदा होता है। योग करने से आप बीमारी से दूर रहते हैं और तनाव मुक्ति के लिए भी बहुत बढ़िया जो है एक योग दवा का काम करता है। यदि आप योग को एक करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं या पेशेवर डिग्री प्रमाण पत्र जैसे 200 या 500 घंटे का कोर्स लेना चाहते हैं, तो हरियाणा से बहुत सारे जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं वहां पर आप इसका कोर्स कर सकते हैं और एक आप भी योगा टीचर बन सकते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आज आपसे प्रश्न किया था, और प्रश्न था कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया किस राज्य में खोजी गई है। तो सही जवाब है महाराष्ट्र। पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित बोरामणी घास के मैदानों में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया खोजी है। छोटे पत्थरों से बनी कई गोलाकार कतारें एक सर्पिल केंद्र तक जाती हैं। यह संरचना सांतवाहन काल के भारत रोम व्यापार से जुड़ी मानी जाती है, और इसकी डिजाइन प्राचीन भूमध्य सागरीय भूलभुलैयाओं जैसी है। तो ये था आज के प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हमारे पास आ चुके हैं। अब आप संदेश भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे श्रोता सोचते हैं हमारा संदेश नहीं पहुंचा, इसलिए दो बार संदेश भेज देते हैं। तो पहला नाम कार्यक्रम में जो आया है वो है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और उनके परिवार के साथी। अगला जो नाम कार्यक्रम में शामिल हम कर रहे हैं वो है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल, योगी मोहल्ला बराड़ा, जिला अम्बाला से। अगला नाम है रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त, आशा रानी। अगला जवाब सही देते हैं अश्विनी कराड़िया, कृतिका कराड़िया, सुबेदार अमरनाथ, रविदास नगर, थानेसर सिटी, कुरुक्षेत्र से। और ये अगला नाम हमें भेज रहे हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, खमहरिया, छत्तीसगढ़ से। और ये कार्यक्रम में नाम है ललिता सिंह और भगवान सिंह, शिलाई, हिमाचल प्रदेश से। और अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है आंकली दीवान, मध्य प्रदेश से, भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी। ये सही जवाब हमें भेजते हैं गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी से, रामधारी अवाना, अनाया, ऊजस अवाना। और ये हैं दरियापुर भवाली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। ये अगला नाम है दंतरेंगी भाटापारा, छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा। अगला नाम है मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरालकर, रतनमाला। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, पद्मा टाकीस, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। ये हैं अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। और ये अगला नाम है कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। अगला नाम है नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर का। ये हैं ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, यूपी से, सतेंद्र कुमार चंसौलिया, विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंत मूणत, बोरखेड़ा, पितरामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। अगला नाम है शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, बीबी प्रियांशी। और ये हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। अगला नाम है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चमोरिया, असलम वली चमोरिया, सरफुद्दीन वली चमोरिया। और ये अगला नाम है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निशांत ध्रुव। और अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा का, ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से। और ये है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज। ये हैं विनोद तोमर, संजू देवी, ममता देवी, ग्राम पंचायत नेहर सबर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से।

ये हैं अगला नाम शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर सरला मनवर बीबी प्रियांशी और ये हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर रीमा ठाकुर का और ये हैं विनोद मूणत नेहा जैन दीपक मयंक मूणत बोड़ खेरा पितनामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चमोरिया असलम वली चमोरिया सफुद्दीन वली चमोरिया। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव श्रीमती संतोषी ध्रुव निशांत ध्रुव। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज और ये अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं विनोद तोमर संजू देवी ममता देवी ग्राम पंचायत नेहार सबर जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। वही श्रोताओं ये दोबारा नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई नाम हमसे छूट ना गया हो क्योंकि आवाज़ नहीं पहुंची थी आप तक। तो कीर्ति कुमार ध्रुव श्रीमती संतोषी ध्रुव निशांत ध्रुव लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से। अगला नाम हमारे पास जो आया है वो है सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्य आरव खुराना रातौर से और ये अगला नाम है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति वर्मा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भक्त श्वेता भक्त की सुतासु और ये हैं सादुल शहर राजस्थान से चौधरी संतोष चौधरी बेबी। अगला नाम है गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज वंश वैभवेश कुमार कंबोज। ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है ग्राम बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवगण गायत्री देवगण यशवर्धन यशस्वी देवगण और ये अगला नाम है टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से और ये हैं अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भव्य कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है बीपी गौतम सरिता गौतम एटा रोड गंजनू द्वारा यूपी से। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढींगरा कृतिका विशु विजय। ये अगला नाम है बोड़सरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू बीमा साहू। ये हैं जिला हिसार से सज्जन जागड़ा कार्तिक व वेदांश चांगड़ा गांव है इनका नलोई और ये अगला नाम है गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया और बेबी करीमा बगड़िया। अगला नाम है फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन हियांश कुमार चंदन सोंगा मगर लूड छत्तीसगढ़ से। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग अंजना रानी गर्ग विकास गोयल अक्रम हुसैन प्रिंस डाक बाबू बेगम इशरत अक्रम वसीम अक्रम रुबीना वसीम नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल पता लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से और ये अगला नाम है गांव भ्राणा ब्राह्मणावाला से है नरवाणा से मेघराज शर्मा। पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे वीणा पांडे विनय शंकर पांडे और ये हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया कविता महोबिया कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती। अगला नाम है नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निर्मला।

Charles. अगला नाम है बिहार स्टेट से डब्ल्यू उला बेलदार, वली उला बेलदार, सोनम वली बेलदार। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, गांव कदुआपड़ा, जिला जगत सिंहपुर, ओडिशा से। अगला नाम है सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादवेंद्र सैनी, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। ये हैं गजराज पन्नू, कार्तिकेय पन्नू, सभी पन्नू परिवार, गांव फुरलक, जिला करनाल से। और अगला नाम है कांटा रोड वाची, महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे। ये हैं जिमी शेख, डोगसे शेख, फ्रॉम अटलांटा सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ये हमें बहुत दूर से संदेश भेज रहे हैं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। न जाने आप कहां से बैठ के हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। विदेश में बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा। और अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार, जगराओं से। ये नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये अगला नाम है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू। और ये अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं सिद्धार्थ कोंडाने, अर्चना ताई कोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से। और ये अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी शंटी। और ये अगला नाम है गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र आशीष साहू। ये हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े। ये हैं फातिमा थापा, सोनम थापा, आसमा थापा छत्तीसगढ़ सरगुजा से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है अटल रेडियो श्रोता संघ साकारा सोमानी, जिला राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, मिलिंद कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू का। और ये अगला नाम है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम। और ये हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरडी झारखंड से। माउनाथ पंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। ये अगला नाम है सबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। नाज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार। ये हैं फिरजापुरा अमरावती से दनेश्वर रामटेके, निर्मला रामटेके। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है उच्चपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी का। ये अगला नाम है जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, योगेश कड़वासरा। और तहसील है भादरा, गांव कलाना। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इरफान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से। और ये हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट, जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़। और अगला नाम कार्यक्रम में आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर, शेरवानी स्कूल गंजनू द्वारा यूपी से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, हैप्पी राय। और ये हैं डेर पाटन गुजरात से धीरज बीरबाड़ी।
और अगला नाम है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राहिर मेहराज जहान आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। यह अगला नाम है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू का। यह है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार साहू। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप मोहिनी रितिक। यह है मोहम्मद यासीन हाशमी नजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ हाशमी। अगला नाम है बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा। यह अगला नाम है मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा और यश मंसूरी। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे शीला धनजे शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी। और ये अगला नाम है कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार हसीना बी पवार हीना सैयद कुकर। और ये अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में वो हैं रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी नजमा बेगम नाज बेबी फातिमा कासी। और ये अगला नाम है ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू जामुन देवी साहू बेबी आराध्या साहू। और अगला नाम कार्यक्रम में जो शामिल हो रहा है दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी। ये अगला नाम है एसएम जावेद गुमला झारखंड से। और अगला नाम है लक्ष्मण लोखंडे कल्पनाताई लोखंडे शैलेश लोखंडे गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। और ये अगला नाम है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा। अगला नाम है पता उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती राव। और ये अगला नाम है कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज संदीप दत्ता बंसी। रादौर से राजकुमार पुजारा अनीता पुजारा साहिल पुजारा। और ये अगला नाम है पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना किशु तुलसी मस्कीन। और ये अगला नाम है मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा। कुरासी छत्तीसगढ़ से पवन क्रांति साहू पंकज साहू सुष्मिता साहू। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े विजय ताइड़े। अगला नाम शामिल हो रहा है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बलोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया और मास्टर अर्क अल कबीर। यह है राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव गांव गाला जिला अंबाला हरियाणा से। अगला नाम है अमीर खुसरो रोड गंजडुंडवारा से डॉक्टर दबरील हसन शबनम अनवार शेख मोहम्मद कलीम। यह है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया। अगला नाम है एम असलम सैफी सद्दाम सैफी सोनी सैफी दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल नदीम पटेल। और ये अगला नाम है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदा से तुलसी मस्कीन। अगला नाम है धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप पाठे। ये हैं सोलापुर महाराष्ट्र गुजरात से गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जगदीश सोनी और लड्डू कुमारी। अगला नाम है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला हुजरे साहबत हुजरे। और अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। माघीराम सैनी पूनम सैनी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी बक्सर बिहार से राज एस टी अंसारी। और ये हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल विशाल सपकाल। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर श्रीमती प्रिया भारशंकर कुमारी समीक्षा भारशंकर। डोडी लोहारा से हैं तुसार डोम आरती डोमिन और खंडवा से हैं निशा जाटव। यह अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है गांव चोलधा बागपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया।
ये हैं संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। और ये अगला नाम है कार्यक्रम में शामिल हो रहा है जो वो है बक्सर बिहार से शफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी। और ये हैं विनय मोहन सेक्टर 18 जगाथरी से। ये अगला नाम है सरिता मौर्या, गौतम बी प्रकाश, कुश गौतम, साई विहार, रामपुर से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है बुल्ढाणा वड़शिंगी से अनमोल मानकर, बुल्ढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर। ये अगला नाम है सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई गुजराती। अगला नाम है कर्मा चौक लोहारी डीह से भाई यशवंत साहू, हर्ष अंश साहू। और ये अगला नाम है गंजडुंडवारा से शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा और अन्नू। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं डोडी लोहारा से राधिका बेलदार और प्रभा बेलदार। ये हैं तरामाई रायगढ़ से अंशु साहू, निशु साहू। और अगला नाम है रश्मि झरना राजकोट गुजरात से। और ये हैं विजय सिंह लखेरा महेंद्रगढ़ से। अगला नाम है नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। ये अगला नाम कार्यक्रम में शामिल हो रहा है रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर का। अगला नाम है दरियापुर भवाली महाराष्ट्र से गजानन यले, नवदीप यले, विश्वदीप यले। और ये अगला नाम है कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से। और ये अगला नाम है रायसन करनाल से रजनीश बत्रा, इनाया बत्रा। और ये अगला नाम है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित दिशानी, जलालाबाद वेस्ट से। अगला नाम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, स्मृति पटेल, बलोच छत्तीसगढ़ से। और ये अगला नाम है निरंक, इन्होंने अंशुल अवनी जोहद जोहड़ माजरा इंद्री से। भैया आप हिंदी में नाम लिखा करें दोस्त, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ने में कभी कभी गलती हो जाती है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन। और ये अगला नाम है शहनवाज सरफराज अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट बुलंदशहर से। और अब्बासी निकहत परवीन अब्बासी भी इनके साथ हैं। अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं गांव बन भगेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा का।

कार्यक्रम में जो अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं वो हैं शनि चौक खंडवा से राकेश भाई और दुर्गा भाई, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वक्कार और माहिरा अजीम, रघुवीर नगर से जफर शेख, डोडी लोहारा से अल कबीर जटोलिया। और ये कार्यक्रम में अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं जो हैं वो हैं डोडी लोहारा से प्रभा जटोलिया, अनीता राकेश जटोलिया, बिहार स्टेट बक्सर से राज एस टी अंसारी, राधिका रानी और वसीम प्रभा अंसारी, ओंकारेश्वर से हैं मनोज सेन और अनीता सेन। अगला नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो हैं, ये कार्यक्रम का अंतिम ईमेल है, खंडवा शनि चौक से राधिका कुमारी, देवश्री कुमारी और अनीता कुमारी, कबीर नगर झांसी से डाली जटोलिया और अजय जलोटिया जटोलिया। तो भाई श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दोबारा नाम पढ़े गए हैं तो उसके लिए हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि कोई नाम हमसे छूट ना जाए, क्योंकि आप तक नाम ना पहुंचे तो फिर आपको बुरा लगेगा। और हो सकता है बहुत सारे हमारे श्रोता मेहनत से संदेश भेजते हैं, उनके नाम शामिल नहीं होते तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता हमें भी। तो अब आपको बता देते हैं, जानकारी का सिलसिला जारी रखते हैं कि दोस्तों, आप जानते हैं कि आज है 10 जून और आज का दिन पूरी इंसानियत के लिए बहुत खास है। आज पूरी दुनिया मना रही है सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में चीन के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए इस दिन की शुरुआत की थी और इसका मकसद बहुत सीधा और खूबसूरत है कि दुनिया अलग अलग संस्कृतियों के बीच नफरत की दीवारों को गिराकर बातचीत के पुल तैयार करती है। साथियों, आज हमारी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तकनीक तो हमारे पास आ गई है लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं। इंटरनेट पर गलत सूचनाएं और नफरत भरे भाषण समाज को बांट रहे हैं। ऐसे टूटे हुए समाज में बातचीत या संवाद का कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी कहा था कि जहां संवाद खत्म होता है वहां अज्ञानता अपनी जगह बना लेती है। इसलिए किसी भी सभ्यता को छोटा या बड़ा समझने के बजाय हमें उसकी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। भारत के लिए तो ये दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती को एक परिवार मान रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब संस्कृतियां आपस में मिली हैं दुनिया और खूबसूरत हुई है। चाहे वह खान पान हो, संगीत हो या विज्ञान, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उन्हें खुले दिल से, खुले दिमाग से समझना भी है। संवाद का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि सामने वाले की संस्कृति और विचारों को पूरा सम्मान देना है। तो दोस्तों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सब मिलकर एक वादा करें कि हम नफरत का जवाब इंसानियत से देंगे। सोशल मीडिया पर किसी भी संस्कृति या समुदाय के खिलाफ उंगली उठाने से पहले आपसी समझ को बढ़ावा देंगे। याद रखिए, विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। तो आपको सुनवा रहे हैं इसी पर एक गीत, क्योंकि बातें तो बहुत सारी कर ली, अब बातें हो रही हैं तो कुछ हम भी कह रहे हैं, कुछ आप भी सुनिए हमसे।

बिल्कुल दोस्तों, हम आपसे कह भी रहे हैं और आपकी सुनते भी हैं। हाँ, आप हमें जब ईमेल भेजते हैं तो हम सुनते भी हैं उस ईमेल को। दोस्तों, अब इसी बीच हम आपको जानकारी भी दे देते हैं कि आज दोस्तों एक ऐसे इंसान का जन्मदिन है जिसने दुनिया को सोचने और जीने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, आज जन्मदिन है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई का। आपको बता दें कि 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरई में जन्मे सुंदर पिचाई का बचपन बेहद सादगी में बीता। दो कमरों के एक छोटे से मकान से उन्होंने अपनी शुरुआत की और इस छोटे से मकान में रहने वाले लड़के के पास न टीवी था और न ही कोई आलीशान गाड़ियां, लेकिन उसके पास था तेज दिमाग और कुछ बड़ा करने का जज्बा। क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनके घर जो रोटरी फोन आया था, सुंदर को उस पर डायल किए गए सारे नंबर याद हो जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा एक शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, पढ़ाई में हमेशा वो अव्वल रहे। सुंदर ने IIT खड़गपुर से बीटेक किया और इसके बाद जब उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली तो उनके पिता ने बेटे के हवाई टिकट के लिए अपनी एक साल की पूरी सैलरी लगा दी। सोचिए जरा, जिस लड़के के पास अमेरिका जाने के लिए टिकट के पैसे जुटाना मुश्किल था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की कमान संभाल रहा है और पूरी दुनिया को उंगली पर नचा रहा है। उंगली पर नचाने का मतलब ये है कि जब आप फोन खोलते हैं तो गूगल आपके सामने आता है और आप सर्च करते हैं, कुछ भी खोज लेते हैं। साल 2004 में सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया और उन्होंने गूगल को गूगल क्रोम ब्राउजर बनाने का आइडिया दिया, जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउजर है। और उनके इसी विजन और कड़ी मेहनत ने उन्हें 2 अक्टूबर 2015 को गूगल का CEO बना दिया। आज वो इतनी सारी संपत्ति के मालिक हैं और दुनिया भर में युवाओं के रोल मॉडल भी हैं। सुंदर पिचाई हमेशा कहते हैं कि अपने सपनों की जो ऊंचाई है, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी असफलताओं को एक मेडल की तरह पहनना सीखो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आपके पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सिलिकॉन वैली की जो सड़कें हैं या उनका रास्ता है, वहां भी आप पहुंच सकते हैं जैसे वो पहुंचे। तो हमारे पूरे रेडियो परिवार की तरफ से, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की तरफ से, इस महान तकनीकी दूरदर्शी सुंदर पिचाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये भारत के लिए गौरव की बात भी है कि एक इंसान भारत से गया और आज अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी का CEO बन गया।

दोस्तों, अब कार्यक्रम में आपके साथ एक और जानकारी साझा करते हैं कि हिंदी सिनेमा के सदाबहार विलन और नारद मुनि के रूप में विख्यात अभिनेता जीवन ओमकार नाथ धर की आज पुण्यतिथि है। उनके अवसर पर हम उनकी बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि आज का दिन भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अध्याय को याद करने का है जिसके बिना ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन पर्दे तक का सफर अधूरा रहता है। जी हाँ, आज जीवन की पुण्यतिथि है और हिंदी सिनेमा के उस बेमिसाल कलाकार की जिन्होंने जब भी पर्दे पर अपनी आंखें तिरछी की तो अच्छे अच्छे नायकों के पसीने छूट गए, जिनकी अनोखी आवाज और संवाद अदायकी ने खलनायकी को एक नया स्टाइल दिया। अभिनेता जीवन साहब बहुत ही अलग मिजाज के इंसान थे और वो अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1915 को खूबसूरत वादियों के शहर श्रीनगर में जन्मे जीवन साहब का बचपन काफी संघर्षों में बीता। जन्म के समय मां का साया उठ गया और महज 3 साल की उम्र में पिता भी चल बसे, लेकिन उनके आंखों में एक सपना पल रहा था और वो था एक्टर बनने का। घर वाले इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। नतीजा ये हुआ कि 18 साल की उम्र में जब वे घर से निकले तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपए थे। नौजवान मुंबई तक पहुंच गया और शुरुआत में उन्होंने स्टूडियो में रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म फैशनेबल इंडिया में। अगर उनकी बात की जाए तो जीवन साहब के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लगभग 49 से अधिक फिल्मों में अकेले नारद मुनि का किरदार निभाया है और उनकी नारायण नारायण की गूंज ऐसी थी कि लोग सचमुच उन्हें ही नारद मुनि समझने लगे थे। इसके बाद जब वो कमर्शियल सिनेमा की तरफ मुड़े तो उन्होंने खलनायकी का रुख ही बदल दिया। नया दौर, कानून, वक्त, जॉनी मेरा नाम, अमर अकबर एंथनी और लावारिस जैसी अनगिनत फिल्मों में उन्होंने काम किया और जो भी काम किया वो यादगार बन गया। जीवन साहब ने अपने 5 दशक के लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और उनके अभिनय की यह विरासत आज भी उनके बेटे मशहूर अभिनेता किरण कुमार के जरिए हमारे बीच जिंदा है। 10 जून 1987 को फेफड़ों के संक्रमण के चलते इस महान कलाकार ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली और भले ही आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की तरफ से इस महानायक के जीवन साहब को उनकी पुण्यतिथि पर हम शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं।

तो श्रोताओं, चलते चलते आपको बता देते हैं, समय तो हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज 10 जून को एक ऐसे कलाकार का जन्मदिन है जिनके गानों पर हमारे पांव थिरकने लगते हैं। 10 जून 1970 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जन्मे अमरीक सिंह को आज पूरी दुनिया मीका सिंह के नाम से जानती है। पूरी दुनिया आज मीका सिंह के नाम से जानती है। दलेर मेहंदी जी के छोटे भाई होने के बावजूद मीका पाजी ने इंडस्ट्री में अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान बनाई है। उनकी उस कड़क और नेजल आवाज में वो जादू है जो चाहे कोई कितना भी उदास क्यों न हो, मीका का गाना बजते ही लोग डांस फ्लोर पर भागने लगते हैं। तो उनको उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र देता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने दोस्त राजीव धीमान को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: ये आकाशवाणी है,
3: हर पल आपके साथ।
2: समाचार हो

इसी गीत के साथ आज का स्वरांजलि कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दीजिए अपने दोस्त राजीव धीमान को इजाजत। नमस्कार।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में, मणिमाल के बदले गले में विषधर को लट

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता है। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: देहाती हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़ छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब है?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को परदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद, नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी भोजपुरी गुजराती फिल्मों में काम किया।
6: यार हमारी बात सुनो,

0: न हो।
1: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
2: दोस्तों, बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA, और भी सलीस हो जाइए। सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, और रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
3: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले तमाम दोस्तों को आपके दोस्त राजीव धीमान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, नमस्ते कुरुक्षेत्र के इस बेहद जो खास कार्यक्रम है, आज इस कार्यक्रम में हम एक मुलाकात कर रहे हैं देवराज सिरोहीवाल के साथ, जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। और उनका पूरा जीवन शब्दों की साधना में बीता, जनसंपर्क और मंच की गरिमा को समर्पित रहा। वो एक पत्रकार हैं, संजीदा लेखक हैं, मंच के जादूगर हैं, यानी उन्होंने मंच संचालन भी बहुत समय तक किया है और हरियाणा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से वो बतौर क्लास वन अधिकारी PRO रिटायर हुए हैं। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज वो लाइव मौजूद हैं, देवराज सिरोहीवाल। सिरोहीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव धीमान जी।
0: जी देखिए, आपका परिचय तो बहुत बड़ा है, यानी अगर हम आपका परिचय करने बैठे तो शायद मुझे लगता है कि शब्द ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने इतने समय तक मंच संचालन किया, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आपने मंच संचालन किया है, और आपके जो मतलब आपकी जो बातचीत है उसमें आपने बताया कि आप जो हैं फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अभिनय में भी मतलब आपने हाथ आजमाया है।
1: जी,
0: तो कहते हैं आपकी ये जो जर्नी है, ये जो आपकी यात्रा है, इसको देखते ही कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जैसे शब्दों के हाथ पांव नहीं होते, पर शब्द ही घाव करते हैं और शब्द ही मरहम बनाते हैं।
1: बिल्कुल सही है।
0: आपकी इस लंबी और शानदार यात्रा जो रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
1: देखिए, मैं बचपन से ही बड़ा संवेदनशील व्यक्ति था और बचपन मेरा मथुरा में बीता, वृंदावन मथुरा में। मेरे पिता जो थे वो एक सेना में अधिकारी थे, तो उनके साथ फैमिली जैसे होती हैं तो साथ साथ चलते रहे, और माहौल जो था वो परिवार का वो बहुत ही अनुशासित था।
0: जी,
1: पिता टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ते थे और मुझे ये लगता था कि बाबू जी की पसंद ये अखबार है, और बड़े होने में मुझे लगा कि इसमें मुझे काम भी करना चाहिए। ये प्रेरणा एक तो वहाँ से जागी अंग्रेजी के लिए, और फिर धीरे धीरे क्योंकि रेडियो के सुनने के बड़े शौकीन थे पिताजी, तो रेडियो हमेशा उनके सिरहाने रखा रहता था, और जब कभी कोई पुरानी फिल्मों के गीत या कुछ आते बच्चों प्रोग्राम, हवा महल कुछ और इस तरह, तो वो मुझे बड़े प्रभावित करते थे। बहुत ही मैं अंदर से एक ये कहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब उसके से जुड़ गया था। और पढ़ाई के दौरान जैसे पांचवी तक मैं गांव में पढ़ाऊँ, ये मेरा मूल गांव जो है वो देवबंद है कैथल के पास, तो वहाँ हम पढ़े हैं, और बड़ा सादगी का ज़माना था, दीवा जोत बत्ती और इस तरह की चीज़ें, लालटेन ये जला के पढ़ते थे हम लोग, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे, माँ उससे रोटियाँ बनाती थी, ये सिलसिला बड़ा लंबा था। और फिर हम फिरोजपुर में चले गए, फिरोजपुर कैंट में, वहाँ छठी से सातवीं आठवीं वहाँ से की, और उसके बाद नौवीं दसवीं पठानकोट से की मैंने, ग्यारहवीं हायर सेकेंडरी तक
0: जी,
1: और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। लेकिन पढ़ने का और लिखने का शौक बहुत अच्छा था, अंग्रेजी का नॉवल पढ़ना, उस जमाने में तो ये TV वगैरह थे नहीं
0: जी।
1: तो ध्यान से पढ़ना, और जैसे पढ़ाई में कुछ अलग तरह का एक व्यक्तित्व था मेरा कि कल क्या पढ़ाया जाना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना घर से, शब्दों के गरिमा को समझना, शब्द तुम्हें आसन चाहते हैं, और जब वो प्रॉपर उसको आसन आप नहीं देते हैं तो वो शब्द या तो अंदर हल्क में अटक जाएंगे या वो पूरी तरह अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने इस चीज को बड़ा समझा और इस तरह ये यात्रा चलने के लिए, और धीरे धीरे पता चला जब एक टीचर ने एक कोई शब्द अंग्रेजी का गलत बोला तो मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने गलती निकाली, मैं सर गलत मत पढ़ाइए, उसको इतना गुस्सा हुआ चाक फेंक के और प्रिंसिपल रूम में चला गया और बोला जी मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी, और मुझे बुलाया गया और मैंने कान पकड़े, बोला गुरु मुझे कभी बेइज्जती कर, मैंने कहा आज के बाद मैं अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलूंगा जब तक कोई बोलेगा नहीं।
0: देखिए, मतलब कहने का ये है कि आपकी परतें बहुत सारी हैं, परत दर परत अगर हम खोलते चले जाएं तो आप एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे हैं, PRO के पद से आप रिटायर हुए हैं, और PRO का काम सरकारी और सरकार और जनता के बीच जो है वो एक मतलब पुल का काम होता है,
1: ये कड़ी है।
0: जी जी, मतलब पब्लिक से डीलिंग करनी है, पब्लिक से बात करनी है, PRO का काम सरकार और जनता या सरकार या मीडिया के बीच एक सेतु होता है
1: जी।
0: यह एक ऐसी तलवार की धार है जो जहां आपको संतुलन बनाना होता है कि इस लंबे अनुभव में आपने जो ये संतुलन बनाए रखा, तो क्या प्रेरणा आपको यहां से मिली या फिर इससे पहले से ही आप ये चाहते थे कि

0: आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आप जनता से जुड़ जाएं।
1: देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छी बात मुझे कही है। मैं इसमें एक आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ।
0: जी।
1: जब मैं पांचवी में गांव में पढ़ता था स्कूल में, तो जाहिर है कि 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती थी और हम लकड़ियां लेने के लिए जंगल में निकल जाते थे 10-12 बच्चों को। तो आकर के जब लकड़ियां बन छटी होती थी, जो कपास की होती हैं, तो उनको चूल्हे में माँ आग जलाती, रोटी बनाती, उसमें से एक छड़ी निकाल ली और उसको हवा में घुमाना और खूब बड़बड़ाना अपने आपसे बातें करनी। तो एक दिन माँ ने जोर का मुक्का मारा और बोले कि लगता तू कमा के नहीं खाएगा, बातों में खाएगा। वो आशीर्वाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बातें बिकने लगी, मेरे शब्द बिकने लगे और मुझे पता नहीं कि इसमें इतने पैसे भी होते हैं और मेरा मान सम्मान इतना बढ़ गया कि माँ का आशीर्वाद था वो।
0: जी।
1: तो
0: जी।
1: आप खुद को, दुनिया में दो तरह के लोग हैं दीमान जी, एक वो जो व्यक्त कर देते हैं, एक वो जो अव्यक्त रह जाते हैं जीवन पर्यंत। तो दोनों व्यक्ति संवेदनाओं से खेलते हैं, कुछ अंदर से खेलते हैं, कुछ बाहर से खेलते हैं। अगर आप उन संवेदनाओं को जनता के लिए आप उसका इस्तेमाल करें तो आप पीआर हो जाते हैं। आप खुद के लिए करते हैं तो अपनी संवेदनाओं को आप नियंत्रित रखते हैं, आप मैनर्स, एटिकेट, डेकोरम, प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। लेकिन आप जाहिर है आप स्टैंड बाई रहे हर तरह से।
0: कह सकते हैं कि आपकी यात्रा जो रही है उसमें लेखन भी रहा है, बोलना भी रहा है, मंच संचालन रहा है, शब्द जो हैं वो आपने मतलब बड़े अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल किया है। और इन शब्दों के इस्तेमाल से हम, आपने अभी जिक्र किया कि इसमें करियर भी बन सकता है, तो आप किस तरह से मतलब युवा जो हैं वो चाहते हैं कि इस फील्ड में आए, वो इस फील्ड में काम करें, अपना करियर बनाएं, तो आप किस तरह से देखते हैं युवाओं को आज के?
1: देखिए, आज की तारीख में, आज का जो दौर है, डिजिटल इंडिया है, पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसी परिस्थितियों में जब आपके पास लेखन के, पत्रकारिता के या डिजिटल आप ये प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट वगैरह है, कंटेंट का काम है, तो अगर मैं दो चीजें पहले कह चुका कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों के सिद्धांत में एक चीज तो आती है, आप खुद को व्यक्त करना सीखें। आप ये देखें कि जो आपके सामने सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या है, उस पर आप होमवर्क करें। आप जहां आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपने मन संचालन नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, तो आप जिस गांव में जा रहे हो उस गांव का आपको इतिहास का पता होना चाहिए कि वहां बड़ी बड़ी घटनाएं क्या क्या हुई, 1857 की जंग में कुछ था यहाँ का, या 1947 के आंदोलन में कुछ था यहाँ पर, या यहाँ के किसी व्यक्ति ने सेना में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, कारगिल युद्ध में वहाँ का सैनिक कोई शहीद हुआ है, या कुछ ऐसी परंपरा जो सर छोटू राम या किसी ऐसे महान पुरुष गांधी जी की यात्रा हुई वहाँ से, या श्री तेग बहादुर जी गुरु जी वहाँ से गुजरे हैं, तो आपके छोटे छोटे इंस्टांस, या पेशावर से कलकत्ता तक जो सड़क गुजर रही है, उस सड़क के किनारे कुतुब छोटे छोटे मीनार बने हुए हैं, उन मीनारों की कहानी आपके गांव से जुड़ी है, कोई एक मीनार वहाँ है
0: जी,
1: वहाँ प्राकृतिक आले हैं, सरोवर हैं, सराय हैं, कुछ कुछ ऐसा हो जिसको आप अपने साथ आत्मसात करके और लोगों के साथ साझा कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये चीज़ें आपके मन संचालन में बड़ा काम देती हैं। दूसरा ये कि दो चीजें इसमें बड़ी खास हैं, एक तो ये व्यक्तिवादी मत बने
0: जी,
1: पहला
0: जी जी,
1: खुद को भूल जाएं। दूसरा ये कि जो सामने, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं और जनता आपके लिए बड़ी चीज है, आप जनता की आवाज है उस समय, तो उन जो बोले, मैं जो भी आप बात कहें वो जनता को सिरोधार्य करके फिर बात आप करें, आप जुड़ जाएंगे बहुत जल्दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरी बातें आप कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो आप चलती फिरती, जो कहते हैं ना एक चलता फिरता विश्वविद्यालय पत्रकारिता मंच संचालन का।
1: इसमें एक बात और मैं कहना भूल गया हूं
0: जी, जी।
1: व्यक्ति जन्म से ही एक स्वर लेके पैदा होता है
0: जी,
1: वो किसी का स्वर जो है वो सा हो सकता है, रा हो सकता है, ग हो सकता है, तो उस स्वर के बाद साधना की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, ये पहला स्वर है, और इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ
0: जी,
1: और थोड़ा एक स्वर बढ़े, इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जहाँ आप कंफर्टेबल हो ना उस स्वर को आप चुने
0: जी। नाटकीय रूप मतलब इंसान के भीतर होता है, फर्क इस्तेमाल करने का,
1: इस्तेमाल करने का, वक्त देख के करने का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कि किस समय पर आपको किस तरह के शब्द इस्तेमाल करने हैं, किस तरह का लिहाजा, किस तरह का अंदाज इस्तेमाल करना है, कहने का मतलब यही है। देखिए, अब ये जानना चाहेंगे कि आज का टाइम जो है ब्रेकिंग न्यूज़ की दौर का टाइम है, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइम है, डिजिटल हो गया सब कुछ, तो जब पत्रकारिता का स्वरूप इतना बदल गया है, तो आप अपने जमाने की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या बुनियादी फर्क देखते हैं?
1: देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क नजर आता है वो आता है कि पहले बहुत लिमिटेशंस थी। आपको 500 वर्ड की या 300 वर्ड की या एक न्यूज आइटम जो है वो 25 या 30 वर्ड की भेजनी थी, उसमें कहना है सब कुछ, और फर्क ये था कि वो सब तक जाती थी। अब क्योंकि क्षेत्रवाद में बढ़ गई अखबार, हर डिस्ट्रिक्ट का एक पन्ना हो गया, उसका सप्लीमेंट हो गया, तो कुछ चीज़ें चंडीगढ़ नहीं जाती है, मुंबई नहीं जाती है, दिल्ली नहीं जाती है, वो छिन्न-भिन्न होकर के लोकल व्यवस्था में जाके खप जाती हैं
0: जी।
1: ऐसे में पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं
0: जी।
1: और मैंने क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया है, मैंने दैनिक ट्रिब्यून के लिए काम किया है, रवारी परिशिष्ट के लिए भी मैंने काम किया है, तो सप्लीमेंट्स में लिखा है, तो मैंने देखा यह आज की तारीख में अंग्रेजी वाले 700 वर्ड्स की आपकी सीमा तय करते हैं कि 700 वर्ड में बोली जो भी बोलना है उसके ऊपर नहीं, वो अगर आप 1000 लिख देंगे काट देंगे वो
0: जी।
1: तो आप कम शब्दों में ज्यादा कहना सीखें, तो ये तो वो सिखाता है। नेट पे आप जो मर्जी आप डालें जैसा करें, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि भाषा चित्कार करती है आज की तारीख में
0: जी।
1: भाषा के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, भाषा के स्वरूप बदल रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू हिंदुस्तानी खड़ी बोली सभी भाषाओं के जो अंग हैं मिलकर के एक नई पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित भाषा बन रही है। तो ऐसे में ये दुख होता है कि जो भाषा के शब्द हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो शब्द जो हैं या मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं, तो उससे वो पूरी तरह न्याय नहीं हो पाता। कोई अंग्रेजी के शब्द लाजमी तौर पर आने तो आ जाए, कोई बात नहीं, स्वागत है उनका, लेकिन जैसे हमारे यहाँ मुझे हैरान होता हूँ कि मेरी परवरिश जो है कुछ मेरे नाना के यहाँ झज्जर में हुई है, जहाँ का पूरा दौर जो था वो उर्दू अरबी और फारसी का रहा है
0: जी, जी।
1: क्योंकि वहाँ झज्जर में नवाब थे अब्दुल रहमान
0: जी, जी।
1: तो वहाँ विरासत में मुझे उर्दू का जो टच था, जो उर्दू का एक आत्मसात करने वाली बात थी, वो मुझे मिली। बड़ी हैरान होता हूँ मैं देख के अलबाद जैसे शब्द जो हैं अरबी और फारसी के जैसे शब्द वो अभी भी हरियाणा में यूज होते हैं। ये लड़का बड़ा अलबादी है।
0: बेशक बेशक कह सकते हैं कि अगर हम उर्दू के शब्दों को हटा दें तो शुद्ध हिंदी बोलना बड़ा कठिन हो जाएगा। कहने में यही आता है कि हम आधे से ज्यादा उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं।
1: तो मैं अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कई बंसीलाल जी से लेके ऑनवर्ड सभी चीफ मिनिस्टर मैंने किया है, तो इफ्तखार पार्टी एक मोमन बात थी, तो मैं उर्दू उसके लिए मैं तैयार होकर जाता था। मैंने उर्दू पढ़ी नहीं है लेकिन उर्दू की बोलचाल में माहिर था मैं, तो मैंने कहा जैसे उनकी पहली कायनात में के लिए कुछ शब्द कहें कलाम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये कायनात ये जमीन और आसमान सब जिसके सारे टिके तू ही है, वही सत्य प्रकाश में कहा गया कि ये प्रभु मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। फर्क कुछ नहीं है,
0: फर्क
1: आपके मन का है,
0: बस मन का फर्क है।
1: कौमी एकता, आपसी भाईचारा, सद्भावना, प्रभु सत्ता, अखंडता सब संविधानिक शब्द हैं, लेकिन संविधान के शब्दों को अलंकन कोई व्यक्ति कर ले सच्चा भारतीय है वो।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम देवराज सिरोहीवाल से बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छे मन संचालक, लेखक और DPRO जो सेवानिवृत्त हुए हैं कुरुक्षेत्र से, और उनकी जो यात्रा है वो आप सुन रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि ध्यानपूर्वक आप सुन रहे होंगे, और उनकी इस यात्रा से कुछ ना कुछ हमारे युवा वर्ग को सीखने को मिलेगा। सिरोहीवाल जी, देखिए आज के युवा जो है लेखन कार्य में, मतलब कह सकते हैं कि लिखना बहुत कम हो गया है, लिखना लगभग भूल ही चुके हैं,
1: पढ़ना भी कम हो गया सर
0: जी, पढ़ना भी कम हो गया,
1: सुनी पड़ी लाइब्रेरी,
0: क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर अब पढ़ते नहीं है विद्यार्थी, और लेखन भी बहुत कम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बहुत कुछ, मतलब काफी दर जो है घटी है लेखन की। तो एक अच्छा अगर लेखक बनना है, जैसे कि आपके बारे में अगर कहा जाए तो आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, अपने बारे में भी लिखी हैं, अपनी जीवनी भी लिखी हैं आपने, और इसके अलावा और भी किताबें लिखी हैं आपने, तो अगर अच्छा एक लेखक बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा हमारे युवाओं को?
1: सबसे पहला जो काम इसमें है वो दस्तावेजों को सहेजना है, उनको आप सहेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये घर से शुरू होगा, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट, आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट, आपकी बुनियादी चीज़ें, आपको अवार्ड जो मिले, उन सबको एक फाइल में डॉक्यूमेंटेशन आप करें। बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको काम करने के लिए आपको उत्साहित करेगी
0: जी।
1: मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है
0: जी,
1: जैसे मेरे फादर लेबनान में शांति सेना में थे भारत की तरफ से, जहां वार चल रही है रफा में
0: जी, जी।
1: गाजा पट्टी में
0: जी।
1: तो उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनके मेडल्स हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं बहुत प्रभावित इन चीजों से, क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, वो 17 भाषाओं के जानकार थे, तो मेरे पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। मैं समझता था कि उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, बड़ी खनक थी उनकी आवाज में। तो बेस जो वॉइस का है, आप गले से बोलते हैं, आपकी आवाज का सिर्फ 90% जो अंश है वो आपका माइक पे आता है। जब आप नाभिमंडल से बोलते हैं, हम जैसे हम ये कहें कि जी मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा पढ़ा है और मैंने बहुत अच्छा किया है, तो वास्तव में वो शब्द बड़े आदर पाते हैं और दूसरों को बड़े ही सम्मोहित करते हैं।
0: यानी वो तो देखिए, अब इन बातों से ही पता लग रहा है कि वाकई आपका जो पारिवारिक नाता रहा है वो सेना के साथ रहा है, क्योंकि सेना में अक्सर जब कमांड दी जाती है, तो जब आर्मी ऑफिसर को कमांड देने के लिए बोला जाता है, तो उसे यही कहा जाता है कि गले से नहीं, पेट से बोलिए, पेट से बोलिए, कमांड निकालनी है तो पेट से निकालिए। तो मतलब आपकी बातों में यही नजर आ रहा है कि वाकई आप भारतीय सेना से काफी जुड़ाव रहा।
1: मैं इसी सिलसिले में एक चीज और कहना चाहूंगा दीवान जी, कि मैं भी सेना में गया था, हम तीन भाई हैं, तीनों सेना में थे
0: जी,
1: पिता के बाद हुआ
0: जी,
1: लेकिन मैं कमीशन के उसमें गया था, तो मैं मुझे लगा कि मुझे कमीशन नहीं मिल पाएगा
0: जी,
1: शायद मेरे लिए वो सूटेबल माहौल नहीं था, मैंने वो छोड़ दी सेना को
0: जी।
1: और एक वक्त आया जब मैं पीआरओ हो गया
0: जी,
1: तो जनरल मानेकशॉ जो थे
0: जी,
1: उनका मन संजाने का मुझे मौका मिला
0: जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये 1980-81 की बातें हैं
0: जी।
1: बड़ा प्रोटोकॉल होता है
0: जी,
1: कि मैं अपने आप को बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रहा था कि भले ही मैंने सेना में मैं नहीं गया, मैंने काम नहीं किया इतना, लेकिन मैं कम से कम जनरल मानेकशॉ के आज मैं उनका जो प्रोग्राम है उनको चला रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और वो उनका राष्ट्रपति से ज्यादा प्रोटोकॉल होता है
0: जी, बिल्कुल होता है। देखिए बहुत मतलब काफी रहा है, उनका नाम भी बहुत रहा है, उनके ऊपर फिल्म भी बनाई
1: है। बहुत रोमांचित हुआ मैं, जनरल टीएन रैना का मैंने किया, अभी लेटेस्ट था विदेशी 51 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष है उनका किया 2007 में, 1 नवंबर 2007 पानीपत में, नीदरलैंड के प्रिंस ऑफ ऑरेंज
0: जी,
1: जो इस समय वहां किंग है
0: जी,
1: विलियम अलेक्जेंडर
0: जी,
1: उनका प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें बहुत देशों के प्रतिनिधि थे, वो मुझे अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ करना था।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो आप वैसे शब्दों में जादूगरनी हो जाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है,
0: पढ़ना पड़ता है,
1: बेशुमार आपको समझना पड़ता है, जहां जाएं उन सभी नामों को अपने साथ समेट लें, जहां भी जाएं, वो ये नहीं पता कौन सी चीज कब काम आ जाए, कौन खाना कैसे खा रहा है, पेड़ से कैसे चीजें टूट रही। मैं एक छोटी सी 30 सेकंड की चीज बताता हूं
0: जी,
1: कि मैं किसी रास्ते से गुजरा था कि तूफान आ गया
0: जी,
1: और एक बाग में जितने आम थे टूट के जमीन पर पड़ गए, और एक बूढ़ा और बढ़िया उसके ऊपर चित्राकर रोने लगे। मैंने देखा क्या हुआ, कोई मर तो नहीं गया, मैं भाग के गया, मैंने देखा वैसे बड़े, मैंने कहा क्या हुआ माई, क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, परसों ये 9,000 रुपये मैंने भाग लिया था और सारे फल नीचे आ गए। मेरे को ये कहानी जो है छोटी छोटी
0: जी,
1: मैंने इनको जिया है, मैंने महसूस किया कि वो मेरे आम टूटे थे उसके नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपने जो है ये सब चीजें ऑब्जर्व की और मतलब उनको देखा आपने और उन सब चीजों को अपने भीतर समा लिया
1: जी,
0: और फिर जब जरूरत हुई तो आपने
1: कलम से उतार लिया, फिर वो उसको भाषा वही थी,
0: कलम से उतार लिया आपने। देखिए जब बात हो रही है मंच संचालन की, तो मंच संचालन जो होता है वो बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि पूरी जो मतलब वहां पे जितने भी दर्शक होते हैं उन सबको बांधे रखना होता है,
1: बिल्कुल,
0: कि उसमें से कोई जाए नहीं,
1: फिर प्रोटोकॉल भी है
0: जी,
1: प्रोटोकॉल भी है
0: और सारे नियम भी हैं, कायदे कानून सब कुछ है। तो देखिए एक आपकी पहचान एक बेहतरीन मंच संचालन की भी है, और मैंने सुना है कि जब आप मंच पर माइक संभालते हैं तो आपके सामने बैठी हजारों की भीड़ जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अक्सर गीता जयंती समारोह में भी आपने जो है अपना हुनर दिखाया है, तो एक अच्छे मंच संचालन संचालक की क्या मतलब जिम्मेदारी होती है और उसके बीच क्या गुण होने चाहिए एक मंच संचालक के?
1: देखिए नक्सल में हम बात करते हैं, उसमें क्या है कि पहले तो सरकार को ये भरोसा हो जाए कि हमारा काम तो सिर्फ यही व्यक्ति कर सकता है
0: जी,
1: वो तब जो प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकता, प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करता है
0: जी,
1: प्रोटोकॉल किसके बाद कौन और पहले, झंडा कब फहराया जाए, विदेशी हो तो झंडा दाएं होगा कि बाएं होगा, दूसरा हमारा कहाँ होगा और हमारा गेस्ट और उनका गेस्ट कहाँ खड़ा होगा, ये मंच संचालकों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए
0: जी।
1: और इसके बाद जैसे मंच पे जो जो है उसको मुख्य अतिथि से अप्रूव कराना चाहिए प्रोग्राम को, कोई कुछ भी लिख के दे आपको उसकी बदल नहीं करना है
0: जी।
1: चीफ गेस्ट को आप दिखाएं, वो जिनको काटना चाहिए काट देगा और जो कहे वो कर देंगे आप अकॉर्डिंग। दूसरा ये कि शब्द बड़े नपे तो ले, आप किसी भी मुख्य अतिथि के लिए शब्दों की भरमार ना करें, आप सुहाती हुई प्रशंसा करें जो अनिवार्य है और प्रोटोकॉल में आती है
0: जी,
1: उसको तोड़े मत। कुछ शब्द बड़े चुने हुए शब्द हैं कि मैं आपका बड़े अदब और कायदे से आपका स्वागत करता हूँ और यहाँ की जो जन भागीदारी सदैव आपके साथ रही है। आपने हमें इनको बड़ा प्यार दिया है और कुछ नज़दीकी बातें, पिछले दिनों आप 3 बार यहाँ पर आए, 10 सालों में आपने 10 साल में ये चीज़ यहाँ पर बदलाव आया, आज गलियाँ चमक रही हैं, आज रोशनी से सारा कायनात।
0: यानी कि अध्ययन करना बहुत जरूरी है,
1: अध्ययन बहुत जरूरी है और होमवर्क करके जाए जहाँ जा रहे हैं आप,
0: जी बिल्कुल,
1: उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। शब्द जो है तसल्ली कर लें, जो आप नहीं बोलते वैकल्पिक शब्द उठा लें आप, जैसे हम ये कह दें कि जज्बात है, जज्बात है, जंजीर है, जंजीर है, आपको उसके बिंदुओं का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जलालत है, जलालत है, और जहन है, जहन है, और एक में अंतर है एक एक बिंदी
0: का। यानी कहने का मतलब है नुक्ते जो है वो कहते हैं कि एक बड़ी पुरानी कहावत है उर्दू की कि एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है।
1: और एक नुक्ता को ना, एक शब्द ऐसा है जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत ही जलील आदमी है
0: जी,
1: बस बिंदी लगा दिए फर्क आ गया परमात्मा में उसमें, जलील आदमी है
0: जी,
1: क्योंकि एक व्यक्ति वो बहुत पूजनीय है और दूसरा व्यक्ति है कि बिल्कुल नकारा है, बहिष्कृत है वो
0: जी,
1: इस बिंदी के कारण है वो,
0: एक शब्द के कारण, बिंदी के कारण।
1: तो मेरा ये मानना है कि 10 शब्द कम से कम एक शब्द के आपके पास होने चाहिए मंच पर, आप रिपीट ना करें आप किसी को।
0: देखिए वही है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि खुदा से जुदा कर देता है
1: जी,
0: जैसे ख अगर लिखा जाता है तो जीम के ऊपर बिंदी आती है और ख लिखना है तो नीचे आ जाती है, ज लिखना है तो नीचे, ऊपर नीचे का ही फर्क है,
1: यही फर्क है। भाषा को आप खेलें जरूर और बड़े एक लयबद्ध होकर के उसको एक संगीत लहरियां दें अपने स्वर में, आप नाद स्वर के नीचे ले जाकर के अपनी जो आपकी बातचीत है उसको जो मोड़ देते हैं, जो आप ट्विस्ट करते हैं और समाप्त करते हैं, तो आप पूरा उसको झंकोड़ दें आप उसको।
0: जी जी जी, बेशक बेशक। तो देखिए अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, अध्ययन की बातें हो गई और लेखन की बातें हो गई, आपने बताया कि किन किन बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, और आपकी बातों में जो ठहराव है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब आपकी जर्नी कैसी रही है, आपकी यात्रा इतनी बढ़िया रही है और उस यात्रा के बीच आपने तमाम चीज़ें की हैं, तो आज के जो युवा हैं उनके लिए तो आप एक तरह की पाठशाला ही हैं
1: जी,
0: हम
1: जी,
0: ये कहेंगे कि आप उनके लिए एक तरह की पाठशाला हैं
1: जी,
0: क्योंकि आपके जो यात्रा रही है वो एक तरह की ऐसी यात्रा रही है कि जिसमें सब कुछ है, क्योंकि कभी कभी एक लेखक बड़ा अच्छा वक्ता नहीं हो सकता और बहुत अच्छा वक्ता कभी कभी बहुत अच्छा लेखक नहीं हो सकता,
1: दोनों चीजें,
0: लेकिन अगर दोनों में ये दोनों चीजें ये एक ही व्यक्ति के भीतर हो तो बहुत कुछ अलग हो सकता है
1: जी,
0: और वो वाकई आपकी जो जर्नी है उसमें कुछ ऐसा ही अलग ही रहा है। तो आपकी जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बहुत ही चलती फिरती, मैंने आपको पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटी है, एक ही तरह के जीवन में पत्रकार, लेखक, मंच संचालक और Class 1 PRO बनना और अभिनेता जी, ये तो बीच में रह गया कि अभिनेता, अभिनेता भी आप रहे हैं तो फिल्मों
1: में,
0: बिल्कुल आपने फिल्मों में भी काम किया है।
1: पहली फिल्म थी चंद्रावल, उसके प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में मैंने काम किया
0: जी,
1: वो गोल्डन जुबली फिल्म हुई
0: जी, हाँ हाँ,
1: उसके बाद मैंने
0: नाम है उसका।
1: उसके बाद मैंने धीमान जी काम किया बटेव फिल्म में
0: जी,
1: इसमें मेरा एक करैक्टर आर्टिस्ट का था किरदार, उसमें मैंने भरत कपूर का ओपोजिट करैक्टर था, मशहूर एक्टर, तो बड़े परफेक्ट वो डायलॉग बोलने वाले कलाकार थे, उसमें मेरा था। उसके बाद एक सांझी फिल्म आई थी, वो मैंने ओमपुरी, सदाशिव मनोपुरकर, गोगा कपूर इनके साथ
0: हाँ जी, हाँ।
1: मेरा एक एसोसिएट विलन का करेक्टर था
0: जी, जी।
1: जिसमें डायलॉग था ये बहुत दिनों से काम नहीं आया है, इसे जंग लग गया है, तब तब
0: जी जी जी। बेशक यानी कि आप एक मतलब कह सकते हैं अभिनेता भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, मंच संचालक भी किया रहे हैं आप, तो इतनी सारी खूबियां जो हैं आप में, इस तरह की आपके जो खूबियां हैं उनको देखते हुए आज का युवा जो है अगर एक इस क्षेत्र में आना चाहता है तो अपना करियर वो बनाना चाहता है तो उसको बुनियादी और व्यवहारिक जो कदम है वो क्या उठाने होंगे?
1: देखिए घूम फिर कर वही बात आ जाती है, पहले आप अपना उच्चारण अच्छा करिए, शब्दों को समझिए
0: जी,
1: और ये देखिए कि गम का माहौल है कि ये खुशी का माहौल है या बीच का माहौल है या कैसा माहौल था, कैसे बोलना है, ये नाटक क्या चीज़ है, जीवन का ही अभिनय अंग है वो, हम जीवन में जो अभिनय करते हैं वही तो है वो
0: जी,
1: फिल्म में क्या है, एक दौर का एक ठहरा हुआ स्क्रिप्ट है बस वो
0: जी, जी।
1: आपको उसको निभाना है। अब एक मारी धरती मारी माँ फिल्म थी हरियाणवी, मैं उसमें धर्मा काका की भूमिका में था
0: जी,
1: हीरो के चाचा के, तो वो बहुत शानदार एक करेक्टर था कि धरती हमारी माँ होती है, क्योंकि हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो वो एक ही समय में अन्नदाता है, दूसरे समय में वही जवान है बॉर्डर पर।
0: बेशक,
1: तो ये चीजें हमें यहाँ से मिली है। मेरा सौभाग्य है कि मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, जहाँ धर्म क्षेत्र को जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और यहीं के बेसिकली हम रहने वाले हैं। तो बड़ी चीज़ें मैं बड़ा पुण्य समझता हूँ कि मेरा बचपन, मैंने जब पहले पद चिन्ह धरती पर रखे वो वृंदावन मथुरा था, और मेरा कर्म का जो आखिरी दौर है वो कुरुक्षेत्र में चल रहा है।
0: बात है, देखिए अब देखिए ना, बात करते करते समय जो है वो भी पंख लगा के उड़ जाता है,
1: बिल्कुल नहीं रुकता किसी,
0: है ना, वो नहीं रुकता। और समय भी देखिए, रेडियो पर देखिए समय का पता ही नहीं चला आपके साथ बात करते हुए, और समय कब निकल गया। चलते चलते जो युवा श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं, जो पत्रकारिता, जनसंपर्क या लेखन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे आप?
1: देखिए, लिखने की एक आदत डालिए, नशा पैदा करिए खुद में लिखने के लिए।
0: जी,
1: रोज कुछ ना कुछ 10 लाइनें 20 लाइनें लिखिए आप। जरूर नहीं मोबाइल पर आप लिखें, आपकी पेन होगा, आपका कागज होगा, उसको धरती पर उतारें उसको।
0: जी,
1: ये प्रैक्टिस आप करिए, मोबाइल में तो बाद में उतारें आप,
0: क्योंकि
1: उससे अंतरात्मा से आप जुड़ नहीं पाएंगे शब्दों के साथ।
0: मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं अभी भी, मेरे पास 20-25 साल 40 साल के पेन रखे हैं
0: जी,
1: मैं अभी भी उन्हीं से लिखता हूँ
0: जी,
1: मैंने वो छोड़ा नहीं, हालांकि मैं खूब माहिर हूँ उसमें।
0: हाँ,
1: मोबाइल पर टाइप करने में, लैपटॉप में।
0: आप देखिए, अब ये बात आपने बोली तो यानी आप समय के साथ भी चले हैं।
1: बिल्कुल परफेक्ट,
0: बिल्कुल, मतलब आज के परिवेश में जो चीजें हो रही हैं वो भी आपने सीखी। और
1: मेरे लैपटॉप में दीमान जी, जो छोटा लैपटॉप चाइनीज था, 16,000 का लिया था 2007 में, उससे मैंने लाखों रुपए कमाए हैं टाइम कंपनी से। उसमें सुराख हो गया, उसमें मैंने प्लास्टिक लगाई ऊपर, मुझे से काम कर रहा हूँ और मोबाइल पे भी टाइप करता हूँ मैं।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है।
1: तो लेकिन पेन नहीं छोड़ा मैंने
0: जी,
1: कागज पेन अभी भी है, कुछ चीजें लिखनी कागज से फिर उतारेंगे इस पर।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी, आज आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्टूडियो में आए और अपने व्यस्त समय से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी मूल्यवान बातें साझा की। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को जो ये मुलाकात है आपके साथ वो बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
1: संग्रहालय भी देख लें धरोहर में, वहाँ हथियारों का एक जखीरा मेरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप अगर संग्रहालय में जाएं तो कौन सी, मतलब धरोहर में,
1: हथियारों की गैलरी में,
0: हथियारों की गैलरी में,
1: प्राचीन हथियार मेरे नाम से गैलरी में
0: जी। अरे क्या,
1: कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में।
0: देखिए, ये पोर्शन एक छूट गया था,
1: कोई नहीं, नहीं नहीं फर्क नहीं पड़ता।
0: चलिए, स्टूडियो में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी सारी बातें की। अब कार्यक्रम में चलते चलते श्रोताओं, आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
1: मेरे ख्याल में बहारें फिर भी आएंगी, वो शानदार एक है कि चमन होता नहीं खाली।
0: यानी आप कहना चाहते हैं कि आपकी सीख लेकर न जाने कहां कौन लिखने के लिए
1: आगे बढ़ जाए,
0: प्रेरित हो जाए।
1: मेरी तरफ से तो प्रेरणा है,
0: मतलब एक और, कौन कह सकते हैं कि एक और सिरोही वाल कहीं ना कहीं जरूर
1: आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम प्रेरणा है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्टूडियो में आज आप आए इसके लिए आपका हार्दिक आभार।
1: धन्यवाद, शुक्रिया
0: जी।
1: ये गाना लगेगा।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र
1: जी। सर
0: जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
1: सर मैं खेड़ा ब्लॉक से सानिया बात कर रही हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं जी? कैसी हैं सानिया?
1: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रहे थे अभी?
1: सर मुझे गाना सुनना था।
0: ठीक है, गाना सुनवा देते हैं आपको। बताइए कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगी?
1: सर मूवी का नाम है जान, गाना है हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे।
0: ठीक है, आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: सर मैं नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी नाम ले लीजिए।
1: सर मेरे पति का नाम है मोहम्मद वसीम, मेरे मुन्ने का नाम है चांद।
0: ठीक है, आप तमाम सभी के लिए ये गाना हम आपकी पसंद का आपको सुनवा रहे हैं।
1: ओके सर।

0: नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: हेलो।
0: नमस्ते कुरुक्षेत्र
1: सर जी। नमस्कार आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बताइए कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
1: सर जी मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: क्या बात है, आपकी भागीदारी जो है कार्यक्रम में हर रोज होती है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं कार्यक्रम के।
1: जी सर हमें कार्यक्रम से प्यार है, तो फिर जिससे प्यार होता है तो उससे मिलन भी होता ही रहता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जो हैं, आप सुबह संदेश जो आता है उसमें भी आप अपना संदेश जरूर भेजते हैं। चलिए जी जी, अभी तक आपके संदेश ही पड़े थे, चलिए आज आपसे बात भी हो रही है, बड़ी खुशी की बात है।
1: ये तो आज खुशी का दिन है।
0: बेशक खुशी का दिन है, बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे थे अभी?
1: सर मैं अब सेवा मुक्त हूँ, और सेवा मुक्त होने के साथ साथ चिंता मुक्त भी हूँ, और रेडियो का आनंद लेता रहता हूँ।
0: इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपने अपना रेडियो को अपना साथी बनाया हुआ है, और रेडियो सुनते रहते हैं आप, बात भी करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी।
1: बिल्कुल सर, रेडियो तो सच्चा साथी है, आखिरी दम तक हमारा साथी रहेगा।
0: चलिए ये रेडियो के प्रति आपका प्रेम देखकर बड़ी खुशी हुई, बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आज आपको कार्यक्रम में?
1: सर आज विश्व नेत्रदान दिवस है
0: जी,
1: तो पहले तो मैं सभी श्रोताओं को इसकी बधाई देता हूँ, और सच पूछिए तो ये एक जागरूकता दिवस है
0: जी।
1: हम सभी को जागरूक करता है कि हम जिंदगी खोने के बाद, जिंदगी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया को देख पाए।
0: बेशक बेशक बेशक, कोई और आपकी आंखों से दुनिया देख सकता है
1: तो हमें कितनी खुशी होगी, हमारी आंखों से दो लोग दुनिया देख सकते हैं।
0: दो? हाँ बिल्कुल, दो देख सकते हैं, दो से ज्यादा भी देख सकते हैं,
1: तो कितनी ये खुशनसीबी वाली बात है हमारे लिए। अगर इस को हम सब अपनाने की कोशिश करें तो इससे बड़ा कोई ना तो दान है ना तो कोई खुशी है।
0: जी बिल्कुल, देखिए और आपको बता दें, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि कई बार एक स्वस्थ जो आई होती है, स्वस्थ आंख होती है, उससे एक की बजाय दो तीन व्यक्ति भी दुनिया को देख सकते हैं, क्योंकि जिनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है तो कोई हिस्सा किसी के लिए काम आता है, कोई हिस्सा किसी के लिए काम आता है।
1: जी जी सही बात है सर, तो कितनी एक फायदेमंद बात है, फायदे वाली खुशी वाली बात है, अगर ऐसा हम करते हैं, हम इसको अपनाते हैं तो ये बहुत ही जागरूकता वाला दिवस है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातचीत की आपने, बताइए अब गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: सर आज मैं गीत भी इसी के मतलब सुनूंगा, फिल्म है जी चिराग
0: जी।
1: और रफी साहब जी की आवाज में बड़ा ही मधुर सा गीत है, तो
0: जी
1: उसके दो लाइनें मैं गुनगुनाऊंगा भी जरूर।
0: हाँ बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा

0: के चले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
1: क्या बात है, आपकी तो आवाज वाकई बहुत बहुत अच्छी आवाज है आपकी तो गाना गाने के लिए। चलिए आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको

0: मुस्कुरा रही हैं। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, जब ये आपकी आवाज चल रही थी तुरंत गाना चला देना चाहिए था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। और
1: कोई बात नहीं सर।
0: जी जी,
1: तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किताबों की दुनिया का ज्ञान असीम सागर है, जहां हर पन्ना एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि इंसानी अनुभवों, कल्पनाओं और विचारों का जीवंत दस्तावेज है। एक अच्छी किताब एक सच्ची दोस्त की तरह होती है, जो अंधकार में प्रकाश का काम करती है। किताबों का यह अद्भुत संसार हमारी सोच को नई उड़ान देता है। जब हम कोई किताब खोलते हैं, तो हम बिना कहीं जाए पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में किताबों को पढ़ने का चलन बहुत कम हो गया है, तो हमें किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें शब्दों का ज्ञान होता है और साथ साथ हमारी लेखन रुचि भी ज्यादा बढ़ती है। किताबें हमें इतिहास के पन्नों से लेकर भविष्य की संभावनाओं तक का सफर करवाती हैं। ये जीवन में छिपी हुई अनगिनत समस्याओं का हल प्रदान करती हैं, और साहित्य, विज्ञान, दर्शन या अध्यात्म, हर क्षेत्र का ज्ञान किताबों में सुरक्षित है। ये हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाने में भी मदद करती हैं। इंसान के जीवन में कई रिश्ते बदलते हैं, लेकिन किताबें एक ऐसी साथी हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। चाहे हम खुश हों या निराश, किताबें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं और एकांत में भी हमें अकेला महसूस नहीं होने देती। कहानियों और उपन्यासों की दुनिया में हमें अलग ही आयाम में ले जाती हैं। ये हमारी कल्पना शक्ति और स्मृति को बढ़ाती हैं और हमें अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकालकर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसलिए किताबें जरूर पढ़ें और किताबों से दूरी मत बनाएं। आज का जो डिजिटल युग है, इसमें किताबें पढ़ना केवल शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह स्वयं को, आत्मा और स्वतंत्रता को पहचानने का बेहतरीन अवसर है। किताबों का यह जादुई संसार हमें मानसिक रूप से मुक्त और समृद्ध बनाता है। आज ही अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालें और अच्छी अच्छी किताबों के साथ एक नई दुनिया बनाएं। तो इसी के साथ दीजिए अब अपने दोस्त राजीव धीमान को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए। लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो
3: रंग तरंग कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती से, लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को। डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अविनाश कुमार अभिषेक शुक्ला की आवाजों में अभी आपने सुना, इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म का नाम सात खून माफ। उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।
2: हे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का

ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने, देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर। मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत।

0: रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या हैं। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी

एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गईं। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए हैं ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत हैं उनमें एक और ख़ास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है। एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने पिछले लगभग 4.5 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उनका राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पिछले वर्ष जनवरी 2025 में ही पूरा हो चुका था। त्याग पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं और सरकार से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। श्रीमती रेणु भाटिया की ओर से कुरुक्षेत्र में अस्पताल के निरीक्षण दौरान नर्सिंग अधिकारियों पर की गई टिप्पणी से देश भर के नर्सिंग अधिकारी उनके विरोध में उतर आए थे। कुरुक्षेत्र अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने सोमवार को 2 घंटे हड़ताल की थी। हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कल 10 से 12 बजे तक पेन डाउन हड़ताल की थी। रोहतक में कल हुए अग्निकांड में 3 लोगों के जलने से मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने जूतों की एक दुकान में लगी इस आग को अग्निशमन दस्ते द्वारा काबू किए जाने के बाद रात को जले हुए 3 शव मलबे से निकाले, जिन्हें PGIMS भिजवाया गया। मरने वाले में एक शोरूम मालिक व 2 कर्मचारी शामिल है। ये आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी थी, जिसने आसपास की 1 दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया। आग पर 6.5 घंटे बाद काबू पाया जा सका। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से विकसित

0: भारत कार्यक्रम के चार प्रमुख स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान के प्रति स्वयं को समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित समावेशी एवं विकसित भारत का सपना हमारी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। राज्यपाल चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के उत्तरी जोन 2 सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी को साथ लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करना भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण और बेटियों के अधिकारों की अलख जगाने वाले सेल्फी विद डॉक्टर अभियान ने आज अपने गौरवमयी 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस विशेष अवसर पर मुहिम के संस्थापक एवं बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने अपने पैतृक गांव बीबीपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर अभियान की सफलता की जानकारी दी।
1: देश दुनिया के 80 देशों तक सेल्फी विद डॉक्टर ने अपनी धाक जमाई और इतने दिलों पर इसने राज किया। प्रधानमंत्री ने बार बार इसका जिक्र किया, तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि इससे लिंगानुपात सुधरा है और लोगों के मन में बड़ा बदलाव आया है बेटियों के प्रति प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर।
0: उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा का लिंग अनुपात कुछ कम हुआ तो उन्होंने वापस अपने राज्य में अपने मूल गांव बीबीपुर से इस अभियान की फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर प्रदेश का लिंग अनुपात बराबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वो उन लोगों को 1,00,000 का पुरस्कार देंगे जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि की सीधे उन्हें गुप्त सूचना देंगे। केंद्र सरकार की पहल पर पहली जून से 30 जून 2026 तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य हरित खाद, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा कृषि आदानों के संतुलित उपयोग के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज़ है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाज़ें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए कुछ जो टिप्पणियां आई हैं हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां कर रही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहां आंखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज़्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी जरूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को जाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए ज़रूरी हैं जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल। इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: नंबर बताओ।
1: काम सीधा सादा है,
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी और तुमसे?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बता।

0: बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके ज़माने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं ज़िंदगी के नए सफ़र में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा ज़रूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ़्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ़्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ़्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ़्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफ़र की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार ज़रूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हमसे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्मपत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: मैं
1: हाँ तुम
2: बस तुम
1: ओफो।
3: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए, चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले तीन दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जमलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: बहुबेटी फिल्म का गीत अब सुनिए, आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी, उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है।
0: हाँ।
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल।
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हमें एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है,
0: है ना? हाँ।
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के, हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं।
0: जी, सुनते हैं गीत।
1: ठीक।

0: तो नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
1: नहीं हो पाती
0: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार के सुंदरता देखने का माध्यम है। मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके। और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ और साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है और जरीयुक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है। कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है।
1: मुझे शौक है तो पहनती हूँ और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है। और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली, और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए, किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था, इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है, आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे

0: छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम, धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है,
0: बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं, सुना लीजिए।
1: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
0: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं।
0: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
1: उसे करेला भी दीजिए,
0: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
1: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
0: हर
1: आप जो खाते
0: थोड़ी थोड़ी,
1: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
1: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरे नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने समझदार इंसान है,
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी। हाँ, है ना?
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया
0: संवाद।
1: हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है। सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना?
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं इसलिए।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे।
1: हाँ,
0: और दो
1: तो
0: सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हदबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है? छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं।

0: एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे। इस तरह से इन्हें मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं। संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो
0: चाहिए।
1: गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना, उड़द, जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी, इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियाँ जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे पास।
1: जी जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे।
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं,
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था।
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी।
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते थे तो निराला जी रहते थे।
1: अरे वाह।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे।
1: गजब।
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे। बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
1: जी जी।
2: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है।
1: जी।
2: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
3: जी।
2: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
3: अच्छा,
2: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
3: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
2: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
3: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
2: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूँगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान
3: जी,
2: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर लाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
3: 3 पेज
2: की चिट्ठी
3: सर्वेश्वर जी
2: और
3: के पास।
2: हाँ, उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैं लिख डाला। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई दी। बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
3: क्या बात है,
2: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूँ, तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
3: क्या बात है।
2: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
3: बिल्कुल,
2: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पर सर्वेश्वर जी का वो पत्र था
3: जी। क्या

0: बात है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर।
1: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी, तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा, ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
0: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
1: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
0: जी जी,
1: वो एक गवैया बन जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। ख़ास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
1: 3 लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
0: अच्छा।
1: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
0: अच्छा।
1: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है। तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक,
1: हाँ, जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
0: जी।
1: ये 80s से लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह वाली कविता एक
0: दो लाइन सुनाइए।
1: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
0: जी,
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली। और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
0: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
0: जी जी।
1: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूँ तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
0: जी, आप अगर सुनाए हमारे, हाँ, तो 4 लाइन,
1: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
0: क्या बात है, वाह।
1: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: ओह गजब।
1: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
0: क्या बात है, वाह।
1: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
0: शेष कुशल है, क्या बात है।
1: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
0: वाह।
1: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
0: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
1: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह,
0: सुनते हैं यही गाना।

प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई, ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग,

0: और गजलकार अलग, इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साए में धूप उनकी बड़ी मशहूर रचना।
1: तो फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं, जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता, उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी
0: जी, जी,
1: तो हम
0: जी।
1: उनकी गजलें सुन रहे थे तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सब को पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं
0: जी। तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए इसकी क्या कहानी है।
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया तो वहाँ शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है तो लोई कहती है कबीर से
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं
0: जी।
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं
0: जी।
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले लॉर्ड मैकाले जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
0: जी जी।
1: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई ये। मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
0: जी, जी।
1: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
0: जी जी।
1: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
0: क्या बात है।
1: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पर लिखा।
0: जी।
1: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी।
0: हाँ।
1: उनका आशीष था।
0: जी।
1: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था।
0: जी।
1: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने
0: कहां पर था, किस
1: वेदा कुंभा थिएटर में।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
1: हुआ है। 9 भाषाओं में अब तक
0: ये मराठी में भी
1: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें। हाँ।
0: जी,
1: इसकी और तो, कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
0: लोई नामकरण कैसे,
1: कबीर की पत्नी है उनका नाम है।
0: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
0: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसिकी है।
1: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
0: जी, क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बात

0: का शीर्षक बना और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं
1: जी
0: आपको
1: जी
0: मिलेंगे,
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: न्यूज़ के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज़ रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओह
0: एक माँ,
1: ओह
0: एक खबर।
1: ओह, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए, पान खाएं सैया हमार वो
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मतलब... मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं हम, दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका बचपन
1: बीता। क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: नहीं नहीं,
0: यहाँ सकारात्मक है।
1: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम आए लगाने आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
0: सृजन करने आए हैं। जी जी।
1: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया। मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
0: नजरिया।
1: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
1: पहली बार देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गाँव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप मैं स्टिंगर हो गया।
0: जी जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
0: जी।
1: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा
0: जी,
1: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने
0: जी। प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है, अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए, तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
1: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
0: जी।
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
0: जी,
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो, उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
0: जी,
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
0: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है, बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वेराइटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: कविता माने कविता नहीं रही
0: जी, जी।
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
0: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
1: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
0: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

अभी आप सुन रही थी विविध भारती की कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आई श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में।

दैनिक कार्यक्रम गीता संदेश, समय रहेगा सायं 6:20 से। आज अध्याय 5 से श्लोक 20 से 22 की व्याख्या की जाएगी। व्याख्याकार होंगे श्री सोमनाथ शर्मा।

युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर हाजिर होंगे साईं 5:30 से। आज हम चर्चा करेंगे सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साथ ही करंट अफेयर्स, युवाओं के मुद्दे, रोजगार और गीत संगीत के साथ हमारे युवा श्रोताओं का मनोरंजन भी होगा।

किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अन्नदाता लेकर हाजिर होंगे साईं 6:30 से, साथ ही ग्राम संसार का समय रहेगा साईं ठीक 7:00।

श्रोताओं, संगीत के आकर्षण इस प्रकार से रहेंगे। कार्यक्रम गाने नए पुराने लेकर हाजिर होंगे अब से कुछ ही देर में 5:05 से। सैनिकों के लिए समर्पित कार्यक्रम जय जवान प्रसारण समय रहेगा 7:30। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता लेकर हाजिर होंगे 7:45 पर। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि ठीक 8:00। और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का आनंद आप लेंगे रात्रि ठीक 10:00।

हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सायं 6 बजे 8:45 पर, रात्रि 11 बजे अंग्रेजी में समाचार 6:05 पर, रात्रि 9 बजे व रात्रि 11:05 पर प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब मृत व्यक्ति के संदर्भ में एक सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक मृतक बुजुर्ग, नाम पता नामालूम, उनकी लाश कृष्णा म्यूजियम कुरुक्षेत्र की सामने बनी पार्किंग में दिनांक 7/6/2006 को मिली है, जिनके नाम और पते के बारे में अब तक कोई पता नहीं चला है। इनके शरीर पर नीचे लाल रंग की धोती, सफ़ेद रंग की बनियान, क्रीमी रंग का कुर्ता, ऊपर काले रंग की कुर्ती व हाथ में स्टील का कड़ा पहने हुए हैं। उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब है। जिस भी सज्जन को, जिस भी व्यक्ति को इन बुजुर्ग के बारे में कोई सूचना लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना कुरुक्षेत्र, विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जिनका मोबाइल नंबर है 7056700819, पुलिस कंट्रोल रूम कुरुक्षेत्र 01744222100। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। गाने नए पुराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त संत कौशिक। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं बीते दौर की मधुर यादों को संजोए कुछ सदाबहार गीत, और साथ ही आज के दौर की धड़कनों पर राज करने वाले कुछ गीत। पुराने गीतों की मिठास और नए गीतों की ताजगी जब एक साथ मिलती है तो संगीत का एक ऐसा रंगीन गुलदस्ता तैयार होता है जो हर उम्र के श्रोताओं के दिल को छू जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से जो प्रेम, अपनत्व और मिलन की भावना को बखूबी बयां करता है आप सभी के लिए।

साथियों, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु भी है। और जब हम मन में किसी अपने के लिए स्नेह का भाव रखते हैं तो गीत अपने आप ही दिल की जुबां बन जाता है।

श्रोताओ, पुराने दौर की गीतों की एक सबसे विशेष बात यह है कि उनके शब्दों की गहराई और जो संगीत की सादगी है, दोनों का अद्भुत संगम मिलता है। ऐसे गीत बरसों बाद भी उतने ही मधुर लगते हैं जितने अपने समय में लगते थे।

और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं नए दौर के संगीत की ओर। कार्यक्रम है गाने नए पुराने। आज का युवा संगीत, नई सोच, नई ऊर्जा और आधुनिक धुनों का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। नई पीढ़ी के गीतों में जीवन की रफ्तार, सपनों की उड़ान, रिश्तों की नई अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सुनते हैं ये चुलबुला गीत।

तो श्रोताओं, इस मधुर गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गाने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है पुराने गीतों की यादें और नए गीतों की ताजगी से सजी ये प्रस्तुति आपको निश्चित तौर पर पसंद आई होगी। अब अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम और नई संगीत की यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम गाने नए पुराने। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में आप सभी युवा साथियों का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार आपके दोस्त संत कौशिक का। साथियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। आपके सपने, विचार, ऊर्जा हमारे राष्ट्र की वास्तविक नींव है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक विषय, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, चर्चा करेंगे युवाओं से जुड़े मुद्दों की और परीक्षा की कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। भारत सरकार की युवाओं के प्रति जो योजनाएं हैं उनके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मदमस्त गीत के साथ।

श्रोताओ, इस मधुर गीत के साथ कार्यक्रम युवाणी का रंगारंग आगाज। और आइए अब बातचीत करते हैं। कुछ आज का विषय हमने लिया है, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। युवा साथियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बीच समझ, सहयोग और सम्मान को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप जानते हैं, आज दुनिया पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई है। कैसे? सोशल मीडिया, इंटरनेट और वैश्विक संपर्कों ने हमें विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों के करीब ला दिया है। ऐसे में एक दूसरे से संवाद ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो मतभेदों को दूर कर सकता है। इसलिए संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। और भारत सदियों से एक ऐसी भावना का वाहक रहा है जिसे हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जी हां साथियों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व को भारत का एक संदेश है। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। युवा वर्ग यदि संवाद, सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना को अपनाए तो विश्व में शांति और भाईचारे का जो एक वातावरण है वो बहुत मजबूत हो सकता है। एक दूसरे के साथ जब हम संवाद करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो हम पाते हैं कि विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषाएं, सब कुछ अलग है, लेकिन युवाओं के सपने और संघर्ष लगभग एक समान होते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: युवा साथियों, भारत डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के युवा जो स्टार्टअप कर रहे हैं, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, और इसके साथ हमारे देश का युवा जो खेल के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सब युवा मिलकर जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण, उसके प्रति अपनी वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करें। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नई उपलब्धियां स्थापित कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आज का युवा बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है रोजगार और कौशल विकास की है। आज हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम स्वयं रोजगार के साथ कौशल को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया का प्रभाव है हमारे युवाओं पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम एक डिजिटल संतुलन बना के रखें। साथ ही साथ जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम के साथ अपने आप को जोड़िए और तनाव से दूर रहिए, तनाव का प्रबंधन रखिए। जब भी आप किसी दुविधा में हों तो अपने आप को शांत करने के लिए ध्यान का अवश्य उपयोग करें। हमारे युवाओं को आवश्यकता इस बात की है कि वो अपनी रुचि, अपनी क्षमताओं को पहचानें। आज सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हम सब की आवश्यकता है कि हम अपने कौशल को किस प्रकार से बढ़ाएं।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: श्रोताओ, इस संदेश के बाद आइए कार्यक्रम युवाणी में बात करते हैं। कुछ अभी हमारे युवा साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, समय प्रबंधन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, संगीत को सुनते रहिए और जो भी आपने पढ़ा है उसकी नियमित पुनरावृत्ति करते रहें। जो हमारे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो देते रहें। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में आप नियमित विश्राम भी करें और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से जुड़े रहिए संगीत के साथ, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

साथियों, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। युवाओं की ऊर्जा, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ी ताकत है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, नई सीख को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम संपन्न करने के अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी युवाणी, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 6 बजने को है, समय है हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को

0: बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग 1 सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत
3: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स थ्री लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान
1: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है
2: Mr. Vaishnav said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex. In Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The government has approved extension in validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0 up to the 31st of August this year or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending to microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The chief of the Balochistan Liberation Front, Dr. Allah Nazar Baloch, has criticized Pakistan's policies in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, saying that growing public resistance in the region reflects demands for fundamental rights, self-determination and political freedom. According to media reports, Dr. Baloch alleged that Pakistan has increasingly relied on repression to suppress dissent but has failed to curb demands for political and economic rights. Meanwhile, reports indicate that more than 30 people have been killed and around 200 injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गत 12 वर्ष भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्र के सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए और केंद्र सरकार ने मनरेगा से VBG रामजी में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रूपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार रिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र में कहा कि यह अवसर उनके वंदन और अभिनंदन का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बीते 12 वर्ष राष्ट्र की सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण, जनसेवा और विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री की यह कालखंड सेवा, सुशासन, संकल्प, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित एक युगांतकारी यात्रा का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देशवासियों ने विकसित, आत्मनिर्भर, सशक्त और गौरवशाली भारत के जिस सपने के साथ देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपी थी, आज 140 करोड़ भारतवासी उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: कुरुक्षेत्र में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया द्वारा नर्सिंग अधिकारियों पर की गई टिप्पणी के बाद धरने पर बैठी नर्सिंग अधिकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में नर्सिंग अधिकारियों ने बताया कि उनके राज्य संगठन की कॉल पर मरीज के हित में उन्होंने धरना उठा लिया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन अहम के चलते उन्होंने माफी नहीं मांगी। नर्सिंग अधिकारी रेणु भाटिया से माफी की मांग कर रहे थे। डॉक्टर के पास उस समय कौन अटेंडेंट था यह पूछे जाने पर उन्होंने इस बारे कोई जानकारी होने से इनकार किया और पता लगाने के लिए जांच की मांग की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक देश की कमान संभालने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज नरवाना विधानसभा के ठाणी गुरुद्वारा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बेदी ने कहा,
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है उन्होंने आज तोड़ दिया है। 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण के, सबसे बड़ी बात है कि 12 साल लगातार प्रधानमंत्री के रूप में एक भी अवकाश नहीं लिया उन्होंने। ऐसा बेहतरीन कार्यकाल, देश के लिए योजनाएं, देश की सीमाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, देश के पूर्व सैनिकों के लिए समान पेंशन, देश के किसान के लिए फसल बीमा योजना, देश के किसान के लिए किसान समृद्धि योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति की जेब में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, 70 साल के ऊपर की आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को यह विश्वास देना कि आपके स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार करेगी।
0: मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की और देश के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि उन्हें विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की उनकी कार्यशैली, अनुशासन, अथक परिश्रम, दूरदर्शी सोच और जन सेवा के प्रति समर्पण प्रत्येक जन प्रतिनिधि के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गत 12 वर्ष भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्र के सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ।
5: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश। आज अध्याय 5 से श्लोक 20, 21 और 22 की व्याख्या की जाएगी। व्याख्याकार होंगे श्री सोमनाथ शर्मा। आइए सुनते हैं गीता संदेश।
6: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 से आगे की व्याख्या। शक्नो

रह। श्री भगवान जी अर्जुन को क्या समझाते हैं? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को त्यागने से पहले ही इंद्रिय से उत्पन्न वेग और काम क्रोध से उद्भव वेग को सहन कर लेता है, वही इस संसार में सुखी व्यक्ति कहा जाता है। वह यहाँ का सुख भोग कर कृष्ण भावना भावित हो जाता है और यहाँ से जाने के बाद परम धाम सुख को पाता है। काम क्रोध एवं इंद्रिय उद्भव वेग को सहन करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। जिसको विवेक हो गया है वही इसे सहन करने में समर्थ होता है। कहते हैं कि जो ये काम क्रोध का उद्भव है, जो वेग है, ये बहुत ही ताकतवर होता है। इसमें कई कई हाथियों का बल होता है। इसको सहन करना हर मनुष्य के वश की बात नहीं होती। जो इस वेग को सहन कर जाता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। ये वेग बहुत ही तीक्ष्ण और तेज होता है। जो मनुष्य इस वेग को आसानी से सहन कर जाता है वह भगवान के परम धाम को पाने में समर्थ हो जाता है। तात्पर्य है, यदि कोई आत्म साक्षात्कार होना चाहता है तो उसे इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जो इंद्रियों का वेग होता है हमें हर तरह से यानी कि भगवान का सुख पाने में हर तरह से यानी कि रोकता है। इसलिए हमें इस इंद्रियों के वेग को हर तरह से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग कौन कौन से हैं? वाणी का वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। ये वेग हमारे को समय समय पर इनके भगवान भक्ति में बाधा बन जाते हैं। जैसे वाणी वेग क्या है? वाणी वेग कई बार हम अपनी वाणी पे कंट्रोल न करके बहुत इनके कड़वा बोल जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, मन इतना चंचल होता है कि वश में नहीं रहता। उदर वेग बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको सहन करना चाहिए। उपस्थ वेग जो हमारी इनके इंद्रिय है उसको इनके उसके वेग को सहन करना बहुत मुश्किल है। तथा जिह्वा वेग, जिह्वा पर इनके संयम रखना। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सुखी रहते हैं। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे, तभी वह भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान के उपस्थ, भगवान के नज़दीक, भगवान के

पृच्छति। भगवान अर्जुन को भावना भावित व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह वास्तव में पूर्ण योगी पुरुष है। यो अंतः अर्थात जो अंतर रूप से जो भगवान के नजदीक पहुंच जाता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब तक मनुष्य अंतःकरण का सुख अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख देने वाली इंद्रियों से कैसे दूर हो सकता है। मुक्त पुरुष अपने सच्चे अनुभव द्वारा ही सुख को भोगता है और वह किसी भी स्थान में अपने मौन योग से अंतःकरण में जीवन के क्रियाकलापों का आनंद ले सकता है। जीवन में मौन रहना भी एक बहुत बड़ा योग है। जिसने मौन रहना सीख लिया, वह भी भगवान के बहुत इन्हें नज़दीक पहुंच जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बाह्य क्लेशों से अपने आप को शांति देने के लिए मौन रहना ही अच्छा समझते हैं, और हम जितना मौन रहेंगे उतना ही अपने जीवन का, अपने जीवनिक क्रियाकलापों का आनंद उठा सकते हैं। और जिसे प्राप्त करने पर और जिस आनंद को प्राप्त करने परम धाम भगवान धाम में पहुंच जाना निश्चित हो जाता है, और भगवान भी वहां पर हमारे को बड़े अपने शरण में बड़े प्यार से रखते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषः छिन्द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हितेरतः। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ऋषि लोग होते हैं, ऋषयः, ऋषय का मतलब है जो अंदर ही अंदर अपने इनके कुछ ना कुछ रचते रहते हैं, जो ऋषि व्यक्ति लोग होते हैं, संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं वो बहुत, और जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से बहुत ज्यादा परे हैं, वही व्यक्ति ऋषि कहलाते हैं, जिनके मन आत्मा आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो सभी जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त हैं, व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म निर्वाण का मतलब है मुक्ति को चले जाते हैं, परम धाम को चले जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वही पुरुष दूसरों के कल्याण में रत रहते हैं, वही आत्म साक्षात्कार करते हैं, अर्थात अपने आप को सही पहचान लेते हैं। ऐसे ही ऋषियों के पाप अपने आप क्षीण हो जाते हैं जो कृष्ण भावना में बह जाते हैं। यदि हम परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाते हैं तो हमारे क्लेश अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो हमने भगवान कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। जब मनुष्य भगवान तो हो जाता है और भगवान भी वहाँ पर हमारे को बड़े अपने शरण में बड़े प्यार से रखते हैं। लभन

0: भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ऋषि लोग होते हैं, ऋषय का मतलब है जो अंदर ही अंदर अपने इनके कुछ ना कुछ रचते रहते हैं, जो ऋषि व्यक्ति लोग होते हैं, संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं वो बहुत, और जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से बहुत ज्यादा परे हैं वही व्यक्ति ऋषि कहलाते हैं, जिनके मन आत्मा आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो सभी जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म निर्वाण का मतलब है मुक्ति को चले जाते हैं, परम धाम को चले जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वही पुरुष दूसरों के कल्याण में रत रहते हैं, वही आत्म साक्षात्कार करते हैं, अर्थात अपने आप को सही पहचान लेते हैं। ऐसे ही ऋषियों के पाप अपने आप क्षीण हो जाते हैं जो कृष्ण भावना में बह जाते हैं। यदि हम परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाते हैं तो हमारे क्लेश अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो हमने भगवान कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। जब मनुष्य भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध होना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश प्रस्तुति श्री सोमनाथ शर्मा की। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुननीए सब बण भाइया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई खेती बाड़ी ने लेकर चर्चा करेंगे। और एक बात और ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि न्यू देखे हैं कि भी जब फसल का बढ़वार करना हमने तो कह रहे हैं किसान भाई ज्यादातर

रासायनिक खाद गिर दे रहे हैं खेत में। कई बार तो उन्होंने देखा है कि हमारे पड़ोसी ने एक कट्टा गिरा तो मैं दो गिरूंगा, इससे बढ़िया फसल मैंने लेनी है। पर भाई इससे क्या होगा, जो मिट्टी की जो ताकत है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो हम तो ये कहें कि भाई ऐसी खाद गिरो जिससे जो है ना आपकी फसल भी बढ़िया हो और इसके गिलें गिलें भाई जो जमीन है उसका भी स्वास्थ्य सुधर जाए। जिक्र कर रहे हैं भाई वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि पर और उसके उपयोग पर। आजकल सारे नहीं सोचे हैं कि भी जो जमाना चल रहा है, जो किसान भाई देख दे रहे हैं कि जो रासायनिक खाद हैं उनका प्रयोग बढ़ता जावा है। पर भाई जो खेती आपने बढ़िया करनी है तो इसके लिए आपना भाई जो जैविक खाद है उसका उपयोग अगर खेती में करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यूँ सोचे हैं कि भाई इसके गिरने तक क्या पता हमारी फसल कम निकला, तो ऐसा नहीं है। तो फसल की अगर आपने इसके उत्पादन को बढ़ाना है तो भाई मिट्टी एक सचेत और जीवंत माध्यम है इसका, क्योंकि अगर हम भाई रासायनिक खेती ना छोड़कर सेंद्रीय खेती में रूपांतरित होना है तो हमने जो है ना जैविक खाद के महत्व को समझना होगा, क्योंकि भाई वो एक ऐसी खाद है जो केचुए के द्वारा बनाई जाए, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में वर्मी कंपोस्ट के नाम से इसने जान जाए। क्योंकि गोबर की खाद बनाने में जहाँ भाई देखे हैं, कई बार तो देखे अगर हम सोचे हैं कि भाई जो शहर के आसपास के खेत हैं भाई गोबर कहाँ तक मिलेगा, या कोई भाई ने सोचा है कि भाई गोबर की खाद बना लें, भाई गोबर की जो खाद बनाओगे उसमें थोड़ा सा जो है ना समय ज़्यादा लगा है। लगभग जो है ना आप देखें भी है गाँव में जब कोई कूड़े करकट का ढेर कम से कम भी 6 महीने 7 महीने तक या साल तक भी भाई उसकी खाद बनाने में लग जाए। अगर आप गोबर की कच्ची खाद गिरेंगे तो भाई खेत में डिमक लगने का खतरा रहेगा। अगर आप उसने सड़ाओगे जब वह काली हो जाएगी तैयार हो जाएगी तो भाई उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। खाद तो बन जाएगी, बढ़िया भी है, पर भाई अगर आप जैविक खाद सोचा बनाने की तो यह जल्दी बन जाएगी तो भाई और खेत में भी ज़्यादा फायदा करेगी। क्योंकि भाई जो है ना आप अगर नहीं सोचा है कि हम तो भाई गोबर की खाद बनाने में ज़्यादा जोर लगा सके हैं, तो भाई इसके गिले गिले जो दूसरी खाद का जिक्र कर रहे हैं जैविक का, उसमें भी भाई आप जो है ना उसको भी बड़ी आसानी से बना सके हैं। तो वर्मी कंपोस्ट भाई है क्या चीज़? यो एक भाई ऐसी खाद है जिसमें विशेष प्रजाति के जो केचुए हैं ना उनके गिला यो बनाई जाए है। और केचुए प्रतिदिन भाई अपने वजन के बराबर मिट्टी तय भाई जो सेंद्रीय पदार्थ है उसने खा कर अपने वजन के बराबर मैला जो है ना शरीर से बाहर निकाला है। और केचुओं के द्वारा भाई जो गोबर या कचरे को खा कर मल द्वारा जो चाय पत्ती जैसे पदार्थ बना हुआ है तो वह वर्मी कंपोस्ट है। तो इस खाद में किसी भी तरह की जो है ना भाई जो तैयार करेगी जो खाद है वो दूसरी खाद के मुकाबले उसमें कई ज़्यादा जो है ना पोषक तत्व उस तक मिलेंगे। और यह खाद गोबर की आम देसी खाद है 8 गुना और भाई जो भेड़ बकरी की मिंगनी की खाद है 4 गुना और मुर्गी की बीट आदि तय भाई अधिक कारगर और प्रयोग तय जो है ना उसने देखा है तो बहुत बढ़िया खाद है। एक खास विशेषता और है इस खाद की, क्योंकि भाई जो ये केंचुए की खाद है यो खाद ठंडी हो है, क्योंकि जबकि हम देखे हैं जो गोबर की खाद है या मुर्गी की बीट की जो खाद है वो गर्म होने के कारण भाई इसे जो है ना वर्मी कंपोस्ट है ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी बात यह है इसमें खास बात भाई इसे किसी भी समय भाई दे सके हैं खेत में। और ईब जो है ना भाई बनाने की विधि इस तरह है इसकी, जो केचुए को कड़ी धूप या बरसात से बचाने के लिए भाई वर्मी कंपोस्ट इकाई को हमने छप्पर के नीचे बनाना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि भाई गर्मी भी आवेगी सर्दी भी आवेगी और भाई बारिशें भी आवेंगी। तो इकाई की चौड़ाई का अगर हम जिक्र करें तो भाई चौड़ाई 2-3 फुट और भाई लंबाई जरूरत के अनुसार आप रख सके हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट रखते हैं और यह विधि भाई जो गड्ढा विधि है इससे अच्छी मानी गई है, क्योंकि इस विधि तय बनाई गई इकाई में बेहतर नमी और जो हवा का संचार है भाई इसके होने तय जो है ना खाद जल्दी तैयार हो जाए। सबसे पहला भाई लगभग 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर मोटी भूसे की या पराली की या भाई सरसों के कचरे की
कोई एक परत भाई आपने बनानी पड़ेगी और इसके ऊपर लगभग 10-12 सेंटीमीटर मोटी गोबर की परत लगाई जाएगी और गोबर की परत के ऊपर भाई 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर फिर खेत में जो है ना जिस तरह के जो काम की चीज़ नहीं है जिस तरह के जो फसल अवशेष हैं कचरा है इसको बिछा सके हैं और उसके ऊपर 3-4 सेंटीमीटर मोटी एक मिट्टी की परत भाई बिछाई जा सके है और सबसे ऊपर 5-6 सेंटीमीटर मोटी गोबर की परत लगाई जाए और इस तरह जो है ना भाई आप एक इकाई का निर्माण कर सके हैं। और सामान्यता देखा है कि जो 500 केचुए के लगभग जो है ना अगर आप रखेंगे तो प्रति घन मीटर बहुत सही रहेंगे। केचुए छोड़कर इकाई को पानी छिड़क कर बोरी ते ढकते हैं और जो आपने इकाई लगाई है यानी कि भाई जहां आप इनको पाल रहे हैं विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सामान्यता देखा है कई बार भाई सर्दी हो या बरसात है उसमें एक बार या भाई गर्मी में 2 बार प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना चाहिए। लगभग 40-45 दिन के बाद खाद बनकर तैयार हो जाएगी और केचुए नीचे चले जाएंगे और तैयार खाद को हटा कर जो बढ़िया विधि है इसके द्वारा भाई उस लगाई इकाई को आप फिर लगा सको हो क्योंकि केचुए ऊपर आकर फिर क्रियाशील हो जाएंगे। इस प्रकार यो चक्कर चलता रहेगा और भाई खाद तैयार होती रहेगी उसमें से निकाल दे रहेंगे और उसका प्रयोग भाई हम अच्छी तरह कर सकेंगे। तो ये तो हमने भाई चर्चा कर ली कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और उसके प्रयोग पर। इब ले लें भाई थोड़ा सा अंतराल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: और भाइयों, ईब देते हैं थोड़ी सी मौसम की जानकारी। भाई गर्मी का मौसम है, हो सका तो भाई एक दो दिन में थोड़ा बहुत बदलाव भी आ सका है। तापमान का जिक्र करा था भाई, आज का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा भाई किसान वाणी, और उसमें हम जो हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक विधि से पुदीने की बिजाई पर। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण व उपचार पर, और भाई जानकारी देंगे साथ में खेती के में रसायनों का सुरक्षित उपयोग किस तरह करना है आपने, इसकी जानकारी हम कल आपको किसान वाणी कार्यक्रम में देंगे। और भाई ईव कराएंगे मनोरंजन भैया का, और आओ सुनते हैं पहला ये रागनी।

और भैया ने यह तो सुनी रागनी, गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और उनके साथी। और भाई नई फसल नई उमंग में जिक्र करेंगे भाई लोबिया की हरे चारे के लिए बिजाई पे। भाई गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो है ना पशुओं के लिए हरे चारे की बड़ी जरूरत पड़ा है, क्योंकि भाई इस टाइम लुआ का जो है ना चाल दी रहा है लू, और इसमें जो है ना बड़ी समस्या हो जाए पशुओं के लिए। भाई हरा चारा भी उनको जरूर चाहिए। भाई कई भाई तो सोचा है कि चलो भाई हरा चारा नहीं मिलता है तो भाई अपना तूड़ी लेकर उसे ना बेदे हैं और उस पर थोड़ा बहुत आटा लगा दे हैं, या भाई उसने खड़खुड़ गिल्ला उसने मिला दे हैं। पर भाई पशु के लिए जो है ना हरा चारे की बड़ी जरूरत पड़ा है। जो हरा चारा

0: है कि लोबिया जो है ना गर्मी के मौसम की सबसे बढ़िया बढ़वार लेने वाली और शीघ्र बढ़ने वाली फसल तो है चारे की, पर जो है ना ये इतनी बढ़िया है कि इसमें चारे के गेला गेला भाई इसकी जो फलियां हैं बड़ी पौष्टिक हुआ। और ये कड़ा बोईजा है ज़्यादातर ऐसे इलाकों में बोईजा है जहाँ पानी की सुविधा पूरी हो। भाई हरे चारे के लिए जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं कि भाई यो इसके हरे चारे के गिल्ला गिल्ला जो है ना यो दलहनी फसल भी है, हरी फली जो है ना इसकी भाई सब्जी बना सका है इससे। और भाई जब ये सारी फलियां तोड़ लें तो इसने खेत में मिलाकर हरी खाद के रूप में भी ले सका है इसकी फसल को, क्योंकि भाई इसके मिलाने तक जो खेत की जो जमीन है ना बड़ी उपजाऊ हो जाएगी। और इससे जो है ना इसके गिले दूसरी जो फसल है वो भी गिला इसके ले सको हो, क्यों, क्योंकि भी जो इससे में जिस तरह के ज्वार है या बाजरा है मक्की के साथ भी इसने आप ले सके हैं, इसकी बिजाई कर सके हैं, क्योंकि इसकी फसल में जो है ना चारे की गुणवत्ता और भी बढ़ जाएगी अगर आप इसकी फसल इन दूसरी फसलें गिला लेंगे। तो भाई गर्मियों में इसको अगर आप दूध देने वाले पशुओं को खिलाओगे ना तो उसमें जो है ना उनमें दूध देने की जो क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी। और भाई फिर देखना, क्योंकि इसके चारे में औसतन 15-20% भाई प्रोटीन और सूखे दाने में लगभग 20-25% प्रोटीन हुआ है। तो इस करके भी जो दुधारू पशु हैं उनको खिलाना बड़ा जरूरी है। कई बातों का ध्यान हमने रखना पड़ेगा इस फसल के लिए। एक तो फसल लेंगे तो भाई ने सोचा है कि भाई कौन सी बुआ किस्म का जिक्र करें, तो भाई सबसे बढ़िया किस्म तो यह है कि CS88 बढ़िया किस्म है लोबिया की, सीधी बढ़ने वाली किस्म जिसके पत्ते भाई गहरे हरे रंग के और भाई चौड़े हुए हैं। इसके बीज का जो रंग है हल्का गुलाबी भूरा सा या भाई हल्का भूरा हुआ है। और इसकी कई किस्में हैं क्योंकि इन किस किस्म में कोई किसी प्रकार का भाई रोग और कीटों से मुक्त है यह फसल, क्योंकि खासकर देखा है कि जो है ना पीला मोजेक जो विषाणु है रोग के लिए इस किस्म की बिजाई सिंचाई वाले इलाके में या भाई कम सिंचाई वाले इलाके में गर्मी और खरीफ के मौसम में कर सके हैं। इसका अगर हरा चारा लगभग 55-60 दिन में कटाई के काबिल हो जाए और इसका जो चारा है इसकी जो पैदावार होगी एक एकड़ में वो लगभग भाई 140-150 क्विंटल प्रति एकड़ है। यदि फसल बीज के लिए लेनी है आपने तो भाई लोबिया की बिजाई का सही समय रहा है मध्य जुलाई तय अगस्त का पहला सप्ताह तक। इसकी जो दूसरी किस्में हैं भाई बुंदेल लोबिया एक है UPC 5286, UPC 5287, ये जो और भी किस्में हैं इसकी इसको भी आप बो सके हैं। मिट्टी और खेत की तैयारी आपने करनी है। लोबिया की काश्त के लिए भाई दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया रहा है, क्योंकि रेतीली दोमट मिट्टी में भी इसको आसानी से उगा सके हैं। जमीन समतल और भाई अच्छे जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसका जो बिजाई का समय है खरीफ की फसल में जो है ना इसकी बिजाई मध्य जून तक जुलाई के अंत तक आप कर सके हैं। अगर भाई मानसून में थोड़ी देरी हो जाए तो सिंचाई वाले जो इलाका है उसमें पानी लगाकर इसकी बिजाई आप कर सके हैं। बीज की मात्रा और भाई इसका बीजने का ढंग तो ये है कि भाई जो पौधे का उचित संख्या रखनी है, क्योंकि बढ़वार के लिए 16-20 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से सही रहेगा। पंक्ति तक पंक्ति का फासला भाई 30 सेंटीमीटर रखें, पोरे या भाई ड्रिल द्वारा बिजाई कर सको हो। पर जब मिश्रित फसल बोई जाए तो भाई लोबिया के बीज की 1/3 मात्रा प्रयोग करनी है। बिजाई के समय जो जमीन है उसमें भाई सही डालते नमी होनी चाहिए और लोबिया के लिए सिफारिश करे गए जो राइजोबियम कल्चर है उससे बीज का उपचार करके फिर भाई आप बिजाई कर सको हो। जो आप उर्वरक देंगे इसको दलहनी फसल है ये, इसमें भाई लोबिया में नाइट्रोजन की जो है ना मात्रा ज़्यादा नहीं होती, फिर भी शुरू की जो अच्छी बढ़वार के लिए 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ बिजाई के समय डाल दें। बिजाई से पहले जो सिंचाई वाले इलाके हैं उनमें 25 किलोग्राम फास्फोरस, ब्रानी जो इलाका है उसमें 12 किलोग्राम फास्फोरस पोरा या भाई ड्रिल विधि तक उसमें डाल दें। अगर मिश्रित खेती ले रखी है तो भाई उसमें उर्वरक जो है ना फसल की सिफारिश के अनुपात में आपने डालने हैं। निराई गुड़ाई का भी आपने पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में जो बोई गई फसल है उसमें भाई एक निराई गुड़ाई पहला सिंचाई देने के बाद बत्तर आने पर कर दें। मानसून की बारिश पर बोई गई फसल में भाई एक गुड़ाई बिजाई के लगभग 25 दिन के बाद आपने करनी है। सिंचाई और भाई इसके जल निकासी का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मई में बोई गई फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 15-20 दिन के बाद करें। आगे की जो सिंचाई है भाई 15-20 दिन के अंतराल पर करनी है। इस तरह कुल मिलाकर भाई 3-4 सिंचाई की इसके लिए जरूरत पड़ेगी। बारिश के मौसम में बीजी की जो फसल है उसमें आमतौर पर भाई बीज सिंचाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जल निकासी का उचित प्रबंध करना भी बड़ा जरूरी हो जाए। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो भाई पानी खेत में खड़े हो जाएगा, जिससे फसल खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कीड़ों से भी भाई आपने इसको बचा के रखना है। कई बार देखा है कि भाई जो सूखे मौसम में लोबिया के ऊपर भाई हरा तेला है यो आक्रमण कर दे है, पर भाई जो इसकी रोकथाम के लिए आपने 200 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना है। पर जो है ना ये ध्यान जरूर रखना है कि छिड़काव के 7 से लेकर 10 दिन के बाद तक इस फसल का हरा चारा जो है ना पशुओं को बिल्कुल खिलाना नहीं है। कटाई भाई लोबिया में 2 कटाई ले सको हो, पहली कटाई बिजाई के 55 दिन के बाद और दूसरी कटाई भाई फसल में फूल आन पर। लोबिया की हरे चारे के लिए कटाई 50% फूल आन तय लेकर 50% फलियां बनने तक पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो भाई इसके बाद इसका तना सख्त हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और चारे की जो पौष्टिकता है या भाई स्वादिष्टता है दोनों ही इससे प्रभावित होंगी। तो इस करके भाई हरे चारे को अकेला खिलाने की बजाय सूखी तूड़ी या ज्वार बाजरा मक्के के हरे चारे या भाई इसकी कड़वी के गेला मिलाकर फिर खिला सको हो। तो ये तो भाई हमने थोड़ा जिक्र कर दिया कि भाई जो हरे चारे के लिए लोबिया की आपने काश्त करनी है, बिजाई कर सको हो, ताकि गर्मी के मौसम में जो पशु हैं भाई उनको चारा बढ़िया मिल सके। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है।
0: और भाई ईब जानकारी दे दें प्राकृतिक खेती के बारे में। भाई है ना भाई प्राकृतिक खेती में जो है ना प्राकृतिक दवाइयाँ ही अपना खेती बाड़ी में जो है ना अपना प्रयोग करनी चाहिए। और भाई जिक्र भी कर रहे हैं हांडी कात बनाने की विधि के ऊपर, क्योंकि जो हांडी कात है ये एक देसी जड़ी बूटी युक्त एक दवाई है। इसमें सारी तरह के जो कीट है या बीमारी है इसको नियंत्रण कर सके हैं। भाई इसको बनाने के लिए अपना केक लेना है 1 किलो देसी गाय का गोबर, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र और भाई नीम की पत्तियां, 1 किलो शरीफा का पत्ता, 1 किलो करंज की पत्तियां, 1 किलो भाई तम्बाकू का पत्ता, 1 किलो पटूस और भाई गुड़ लेना आपने 50 ग्राम और भाई 1 मुट्ठी दीमक वाली मिट्टी, यो तो लेना भाई अपना सामान। और भाई इसको बनाना क्यूकर है, ये जो हमने सामग्री बताई है इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना कूटना है, कूट करके फिर इसको मिलाना है और फिर जो है ना मिट्टी के बर्तन में भर के 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद जो ये सामग्री है इसको निचोड़ कर इसकी गाद निकाल लें और काथ जिसना कहते हैं इसको मार्किन के कपड़े तक छान कर डिब्बे में भरकर रख लें। बची सामग्री को फिर ते भाई उस मिट्टी के बर्तन में डालकर 1 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाकर रख दो। यो काथ प्रति सप्ताह लेना और 1 लीटर गाय का मूत्र मिलाना। अगले 6 महीने तक यो हंडी दवा निकाल कर उपयोग कर सका है। एक बात और है इसका फायदा, और 100 मिलीलीटर भाई काथ को 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में स्प्रे कर दें। बालक फसल या भाई पौधे लिए 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर हंडी काथ मिलाना है। इस खाद का स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर किसी भी फसल में आप कर सको हो। दवा स्प्रे के लिए भाई 15 लीटर पानी में 1 रुपए वाला 1 पैकेट शैम्पू मिला लें और स्प्रे सुबह और शाम के समय आपने करना है, जब जाकर इसका फायदा रहेगा। तो इस तरह भाई आपने हंडी का जो दवा है प्राकृतिक दवाई है, कोई किसी प्रकार का भाई नुकसान नहीं करेगा। आप इसका स्प्रे अपने खेत में कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए या और दूसरे कीट है जो फसल में हानि पहुंचावा है इसके लिए कर सके हैं। और भाई एक जानकारी देंगे किसान भाइयों को किसान कॉल सेंटर के बारे में। किसान कॉल सेंटर का भाई नंबर हम बतावा है 1551। आप भाई इस नंबर पर खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सको हो। किसान भाई ये मत सोचें कि भाई कौन बतावेगा, खेती बाड़ी संबंधी जो भी विशेषज्ञ होंगे वो आपको जरूर जानकारी देंगे। और भाई इसी के लाइक कार्यक्रम अन्नदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सब बाण भाइयों सले भाई की एक बार फिर राम राम कार्यक्रम ग्राम संसार। और इसमें भाइयों ने जानकारी भी देंगे और साथ साथ में भाई मनोरंजन भी करावेंगे, क्योंकि कार्यक्रम ग्राम संसार है भाई। और भाई रागनी तो जरूर सुनवावेंगे, पर भाई उससे पहला लेंगे थोड़ा सा अंतराल।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
7: जलवायु परिवर्तन, हम क्या कर सकते हैं? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है, और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक, सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
0: और ईब करा रहे हैं भैया का मनोरंजन इस रागणी तक।

न्यारे न्यारे ढंग जमाना। इस रागणी के गायक कलाकार थे महेंद्र समधिया। और भाई जमाने का जिक्र कर लिया तो भाई जमाना बिल्कुल बदल गया। क्या बदल गया भाई? देखा है कि आजकल जो है ना, जो बालक है उनको तो रहन सहन ही बदल गया। पहले वाले तो बातें नहीं रही भाई। जमाने के साथ साथ जो है ना, खाना पीना भी बदल गया और इसके गिला गिला भाई पहरावा भी बदल गया। तो भाई हमारी जो संस्कृति है पहले वाली, उसमें काफ़ी बदलाव देखने मिला है। क्योंकि भाई खाने के साथ, पहनने के साथ भाई पहला जो पहरे करा थे और आज के पहनावे में काफ़ी अंतर आ गया। और भाई ईब जो है ना, बालक नहीं सोचा है कि भाई खाना पीना भी कड़ी औरतें मंगा ले, घर की बनी चीज़ें कम खावा, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खावा। और ख़ास करके जो हमारे युवा साथी हैं वो तो भाई तली चीज़ों पर विशेष ध्यान देकर रखा है। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं के भाई खावा है, मैदे ते बनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। पर भाई पहले समय में की करते भाई, दूध होए करे था, घी होए करे था, ये सारे सौदे भाई घर देसी होए करा थे। पर भी आज आप भी देख रहे हैं कि भाई कोई घर बैठे बैठे नहीं कहेगा कि भाई रोटी मंगानी है, भूख लग रही, रोटी की जगह नहीं कहेंगे ऑर्डर कर देंगे फोन के ऊपर ही, भाई हमने पिज्जा चाहिए। कोई कहेगा चाउमीन चाहिए।

कोई कहेगा डोसा चाहिए, कोई कुछ मंगावेगा। इसी तरह भाई और सामान भी जो है ना सब फोन के जरिए खरीदन लग रहे हैं। पहला के करें थे भाई दुकान पर जाया करें थे, अपनी मनपसंद की चीज़ लिया करें थे, देखभाल कर लिए करें थे, और भाई मॉल भी करे करें थे बैठ कर, और भाई दुकान वाले गेला तो भाई न्यू कह करें थे भाई इतने का सामान नहीं भाई इतने ला ले। पर भाई समय के साथ साथ जो है ना बदलाव आ गया, और जिक्र भी करते रहे हम कई बार कि भाई जो ऑनलाइन खरीदारी है इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, और भाई जो ऑनलाइन खरीदारी है भाई करण लग रहे हैं, बालक भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं आजकल देखा है। पर भाई कुछ एक खास बातें हैं इनका विशेष ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाए। भाई जो ऑनलाइन अगर ने सोचा है कि भाई हमने ना तो कोई सामान लेना है और फोन फट देनी है भाई ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन मंगावेंगे, सारा दिन देखा है कि भाई बाजारा में भी जो मोटरसाइकिल वाले हैं भाई पीछे सामान लाद का फिर दे रहे हैं और भाई जिसका भी ऑर्डर है उसके पते पर पहुँचा दे हैं। पर भी जो ऑनलाइन खरीदारी है उसमें बहुत सारी बातों का अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि आजकल का जो बाजार है वैश्विक बाजार है, ऑनलाइन का भाई काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है, भाग दौड़ वाली जो है ना जिंदगी जी रहे हैं सारे। पर भाई शोरूम में जाकर कई तरह की चीज़ें देखे करें थे, उनकी कीमत देखे करें थे, उनकी जाने करें थे भाई के कीमत है। पर भाई इसकी बजाय आज के करेंगे एक बटन दबावा और भाई पट देनी जो है ना वो चीज़ बुक कर ले हैं, भैया चीज़ मेरे द्वारा भेज दें, उसकी शॉपिंग कर ले हैं, उसकी खरीदारी करते हैं, तो समय और शक्ति की जो देखा है कि बचत कर रहे हैं। पर भाई जो खाने पीने की चीज़ें हैं ऑर्डर ले कर, बिजली का सामान है, और भाई जो दूसरा सामान है गहने हैं, कॉस्मेटिक है, कपड़े हैं, आजकल देखा है कि खरीदारी जो है ना ऑनलाइन ज़्यादा होने लग रही है और कई तरह का सामान जो है ना ऑनलाइन के जरिए खरीद रहे हैं, बालक भी सारे खरीदने लग रहे हैं। पर केवल भैया सुविधाजनक तो है पर पैसे बचाने का माध्यम जो है ना बनता जान लग रहा, पर ऑनलाइन शॉपिंग का जो बाजार है वो भाई बहुत फैल गया, और एक सजग उपभोक्ता के लिए भाई यो जरूरी है कि खरीदारी ते पहला कुछ बातें उसके ध्यान में जरूर रहनी चाहिए। सबसे पहले तो न्यू पता होना चाहिए कि भाई इसके बनाने वाला कौन है, कौन इसका वितरक है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी जानकारी जरूर ले लें। और भाई जिस वेबसाइट ते आप सामान खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं वह संबंधित भाई सामान बेचने के लिए अधिकृत है या नहीं, केवल प्रचलित मान्य और भरोसेमंद वेबसाइट ते ही सामान का ऑर्डर करना है आपने। कभी लुट जो भाई धोखा खा जाए कई बार, कभी भी साइबर कैफे पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग न करें भाई, क्योंकि यो क्रेडिट या डेबिट कार्ड तय खरीदारी करने के लिए सुरक्षित नहीं है। ऑर्डर करने से पहले भाई जांच लें कि जो वेबसाइट है उसका लैंडलाइन फोन नंबर, ईमेल आईडी या पता दिया रखा है कि नहीं। खरीदारी से पहले भाई मेल या लैंडलाइन नंबर पर जरूरी जानकारी ले लें, इस बात का भी ध्यान रखेंगे जो उपभोक्ता हैं। डिलीवरी, रिफंड, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, खराब वस्तुओं के बदलने संबंधी जरूरी जानकारी खरीदारी से पहले, ये सारी जानकारी आपने लेनी है। ऑर्डर करने के बाद पेमेंट रिफरेंस नंबर नोट कर लें। संबंधित वस्तु की कीमत को भाई कई तरह प्रचलित वेबसाइट पर जाकर थोड़ा जांच करके फिर ही आपने जो है ना भाई सामान खरीदना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई वस्तु जो है ना लेने पर उसे तुरंत खोल कर देखना है। कई बार देखा है कि भाई वो तो दे ही और भाई साफ जावा पर पीछे से भाई वो चीज़ कोई ख़राब निकल जाए उसमें फिर बड़ी दिक्कत आवा है बदलाने में भी, और भाई उसके जो के पता बदला है कि ना बदला, और कई बार तो खोलने तो के पता भाई कोई टूटी फूटी निकल जाए, तो इस करके भाई इसके बारे में पता चल सके तो ऐसी अवस्था में वस्तु की कीमत का भुगतान ना करें और उसे जो है ना तुरंत वापिस कर दें, उसको ओड़े चेक करके फिर ले वहाँ। यो जानकारी जरूरी प्राप्त कर लें कि जो संबंधित वस्तु का खराब हो जाने की स्थिति में उस कंपनी का सर्विस सेंटर कहाँ है। केवता भाई कोई सामान ले लिया और सर्विस सेंटर केवता आसपास ना हो तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो जरूर जान लें भाई आसपास कहाँ पर है।
कई बार देखा है कि कंपनियों द्वारा भाई लुभावने बढ़ा चढ़ा कर करे जाने वाले जो वायदे हैं वह भाई और उसके गला गले नहीं कहेंगे भाई इतनी चीज़ खरीदो इस पर इस तरह का फ्री गिफ्ट देंगे। ऐसे ऐसे जो कई बार जो है ना भाई धोखे में आ जाए हैं और वो खरीद ले हैं और फिर भाई वो लूट भी सका है धोखा भी खा सका है। तो उन ऐसे ऐसे सावधानी बरतनी है आपने, सोच समझ कर ही आपने जरूरत के अनुसार खरीदारी करनी है। और भाई ऐसी वेबसाइट जो HTTPS तक शुरू हो वे खरीदारी के लिए सुरक्षित रहे, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। कुछ भी अनुचित होने पर चुप नहीं बैठना, अपनी शिकायत जरूर दर्शानी है, आपने जरूर दर्ज करवानी है कि भी मेरे गला हो सका है कोई फ्रॉड कर जाए। तो यह जानकारी आपने सोचो भाई कोई बात नहीं नुकसान हो गया, नहीं, उसकी जो है ना शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। कई बार डेबिट कार्ड से भी आपने बचना है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए भाई डेबिट कार्ड की बजाय सुरक्षित क्रेडिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट इसका इस्तेमाल करना है। और कई बार देखा है कि आपका जो डाटा है उसकी गोपनीयता की सुरक्षा भी आपने करनी है, क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी भाई खरीदते समय जो है ना अपना पता जन्म तिथि या वित्तीय जानकारी केवल तभी साझा करनी है जब यह पूर्ण रूप से जरूरी हो, भाई इब तो देनी ही है जानकारी। एक कई बार जो है ना जानकारी जब हम सामान खरीदते हैं तो भाई कोई एक OTP आवा है, वन टाइम पासवर्ड, तो किसी भी व्यक्ति के साथ अपना बैंक या भाई UPI से संबंधित OTP और पिन भाई आपने साझा बिल्कुल नहीं करनी है, हो सके भाई फ्रॉड हो, कोई धोखाबाजी हो जाए कदे। यदि आप भाई किसी नई या अनजान साइट तक खरीदारी कर रहे हैं तो भाई हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ही विकल्प आपने चुनना है। सीधे बैंक ट्रांसफर या संदिग्ध जो कोई QR कोड के माध्यम से भुगतान करने से आपने बचना है। पासवर्ड का जिक्र करें तो भाई अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड आपने बनाना है और समय समय पर भाई उसको बदल दे रहे अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। किसी भी लुभावने ईमेल में दिए गए संदिग्ध लिंक पर भाई कभी भी क्लिक न करने, कई बार धोखा हो जाएगा, फिर कहें भाई हमारे पैसे इतने निकल गए, इतने अकाउंट में थे इतने रह गए, फिर तो चक्री काट दे फिर जाए भाई, कुछ नहीं बनता फिर। तो इस करके भाई जागरूक रहें, सुरक्षित शॉपिंग के बारे में अधिक जानें, किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में भाई तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत भाई दर्ज करवाएं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार भाई ने सोचा है कि ऐसा नुकसान हो गया तो क्या करें, तो ये भाई 1930 नंबर को हमेशा याद रखा करो अगर कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए। तो भाई ऑनलाइन खरीदते समय हमेशा जो हमने बताया था कि भाई HTTPS वाली सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करना है, किसी भी अनजान लिंक या भाई भारी डिस्काउंट वाले लुभावने विज्ञापन से बचना है, हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना है। और भाई सार्वजनिक कई बार देखा है कि लालच में आ जाए हैं, वाईफाई का उपयोग करके भी कभी भी ऑनलाइन पेमेंट आपने नहीं करनी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए भाई आपने कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो वेबसाइट है उसकी प्रमाणिकता को भी आपने जांचना है। किसी भी नई वेबसाइट या अज्ञात विक्रेता से खरीदने से पहले दूसरे ग्राहकों की समीक्षाएं या रेटिंग जरूर देखनी आपने। तो इस करके भाई आपने चौकस रहना है और भाई जो OTP आवा है उसको किसी को नहीं बताना है। तो भी जब भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो सावधानी पूर्वक आपने करनी है। यह तो भाई हमने जिक्र कर लिया कि भाई ऑनलाइन जो है ना खरीदारी कर रहे हैं किन किन बातों का अपना विशेष ध्यान रखना है। और भाई ईब करावा भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं भाई ये रागनी।

और भाइयों, इसी रागणीय गला एक कार्यक्रम ग्राम संसार यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों को आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। सैनिक भाइयों और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का सैनिक केवल हमारी सीमाओं का प्रहरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान का सच्चा रक्षक भी है। देश के वीर जवान दिन रात हर मौसम और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनका साहस, त्याग और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के इस विशेष अंक में हम अपने देश के वीर सैनिकों को नमन करते हुए कुछ गीत सुनेंगे जो देशभक्ति, वीरता और राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रोत हैं। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
3: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
4: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आइए कार्यक्रम जय जवान को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सैनिक भाई जिनका जीवन अनुशासन, साहस और राष्ट्र प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है, उनकी वीर गाथाएं हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। देश के इन अमर प्रहरियों को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की तरफ से सत सत नमन। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्र गौरव को समर्पित है। इसकी ऊर्जावान धुन और प्रेरणादायक शब्द हर श्रोता के मन में देशभक्ति का भाव उत्पन्न कर देते हैं। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर सैनिकों के कारण ही हम सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं। आपका त्याग, समर्पण और राष्ट्र प्रेम सदैव हमारे सम्मान और कृतज्ञता के पात्र हैं। आइए हम सब अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम जय जवान यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। जय हिंद।

आप सुन रही थी गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। लेकर हाजिर हैं, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार, आदाब, शुभ संध्या। साथियों, गजल एक ऐसी विधा है जो दिल की भावनाओं को बड़ी नज़ाकत, खूबसूरती और गहराई के साथ अभिव्यक्त करती है। शब्दों की मिठास, भावों की कोमलता और सुरों की मधुरता जब एक साथ मिलती है तो गज़ल सीधे दिल तक पहुंच जाती है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं के लिए हम लेकर आ रहे हैं गज़ल गायकी की दुनिया के एक लोकप्रिय और सम्मानित स्वर पंकज उधास के साथ। अपनी मखमली आवाज़ और दिल को छू लेने वाली अदायगी ने आपकी गज़लों को घर घर तक पहुंचाया और श्रोताओं के दिल में एक खास स्थान बनाया। तो आइए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इस गज़ल के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: श्रोताओं, पंकज उधास की गजलों की सबसे खास बात यह है कि उनकी गायकी में सादगी, भावनाओं की गहराई का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी आवाज में दर्द भी है, अपनापन भी है, एक ऐसी मिठास भी है जो बरसों तक श्रोताओं के मन में बसी रहती है। आइए सुनते हैं एक और गजल।

और शुद्धो इस गज़ल के साथ ही आज का गुलदस्ता कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आदाब।

आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आपके लिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर है आपका दोस्त संत कौशिक। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा अभिवादन। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय फिल्म संगीत के उस महान रचनाकार को जिसने अपनी प्रतिभा, संवेदनशीलता और संगीत साधना से लाखों दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन की। आइए कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन की। परिवार में साहित्य और संगीत का वातावरण, बचपन से ही संगीत के प्रति झुकाव, लेकिन दृष्टिहीन होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी। शास्त्रीय संगीत का गंभीर अध्ययन किया और संगीत को ही अपना जीवन बना डाला। मुंबई पहुंचे, संघर्ष का लंबा दौर देखा, सामना किया, लेकिन आपकी प्रतिभा ने फिल्म जगत का ध्यान जल्दी ही आकर्षित किया। एक बहुत ही लोकप्रिय गीत

शुरू 70 और 80 का दशक रविंद्र जैन के संगीत का स्वर्णिम काल माना जाता है। आपकी धुनों में भारतीय लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और सरल भावनाओं का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आपके गीतों में कोई बनावट नहीं है, बल्कि सहजता, आत्मीयता दिखाई देती है और यही कारण है आज भी उनके गीत श्रोताओं के दिलों पर राज करते हैं।

श्रोताओ, रविंद्र जैन जी ने विशेष रूप से राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में यादगार संगीत दिया। उनकी धुनों ने पारिवारिक फिल्मों को नई पहचान दी। उनके संगीत की सबसे खास बात भारतीय मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ। गांव, परिवार, रिश्ते, मानवीय संवेदनाएं उनके गीतों में सहज रूप से अभिव्यक्त होती है।

शुद्ध रविंद्र जैन जी केवल संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट गीतकार भी थे। वे शब्दों और धुनों दोनों पर समान अधिकार रखते थे, और यही कारण है उनके गीत सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं।

0: दोस्तों, रविंद्र जैन जी के संगीत में भारतीय लोक संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में गांव की मिट्टी, लोकधुनों की मिठास और भारतीय जीवन दर्शन की सुगंध देखने को मिलती है। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम है नदिया के उस पार। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस फिल्म का संगीत आज भी ग्रामीण भारत की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। आइए सुनते हैं ये अमर गीत।
1: हार मान जाएंगे? तुम गाओ तो।
2: नहीं।
1: अरे गाओ।
2: नहीं।
1: अरे गुंजा गाओ ना।

शुद्धव रविंद्र जैन जी केवल फिल्मों में ही अपना संगीत नहीं दिया, इसके साथ ही अनेक भजन, धार्मिक कार्यक्रम और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी संगीत दिया। विशेष रूप से रामायण और अन्य धार्मिक धारावाहिकों में उनके योगदान को आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनकी संगीत साधना में आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है।

दोस्तों, रविंद्र जैन भारतीय संगीत जगत की वो अनमोल धरोहर हैं जिनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। उनकी धुनों में संवेदना है, शब्दों में आत्मीयता है, संगीत में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है। इसी भाव के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समय है क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित

0: स्थापित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी पत्नी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ.
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था, OP नैयर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। सविता सिंह को नमस्कार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
3: क्या तकते हो?
2: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान ली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी ज्योतिषी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवाला तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मारा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें, उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब यह है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। यह कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूं। बंबई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरिम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमॉस्फेयर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डगलस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने, कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह, क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था जी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा अशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों, है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
5: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रका की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
0: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
1: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
0: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
1: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं, भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
6: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
7: बदतमीज़, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
6: मेरी बेटी कहां है?
7: बैठे कौन सा बेटे?
6: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
7: हमें कुछ याद नहीं।
6: याद करो, प्लीज याद करो।
7: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
6: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
7: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में।
6: मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहां है।
7: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
6: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
7: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
1: गुलशन परस्त हूं मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूं मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू,

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूँ, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुम्हारी ये छेड़छाड़ नहीं चली,

0: अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, के दुशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
1: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई
0: कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
2: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
0: धूत।
2: अरे वही बसंती।
0: अच्छा ओ तुम्हार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
3: 100 जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: हो।
1: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
2: दोस्तों, बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
3: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती की कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत अपने नाम और पते के साथ भेजते हैं, कार्यक्रम में आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9466021336 पर आप अपने पसंद के गीत के साथ अपना नाम और पता हमें भेजें। कार्यक्रम में आपकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। कसूर फिल्म के इस गीत के साथ गीत को सुनना चाहते हैं नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम। बागड़ी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा श्रीमती फुंदीबाई बागड़ी। मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद नसी, पलक और यश मंसूरी। कुल स्वामिनी रेडियो क्लब तालुका श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बीडवे, श्रावण अनिता बीडवे। भोपाल नगर राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। तेलंगाना से हमारे श्रोता हैं एम ए वाहिद रुमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, जुनेद और जुबेर। मलोट पंजाब से हमारे नियमित श्रोता हैं आदर्श नगर से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। दुर्गा कॉलोनी हाथी से हमारे नियमित श्रोता राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बाबू और डब्बू। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजे राजदीप, राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली से। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कोसर। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना, प्रणय और हीरामन। बागपत से ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप और परिवार के सदस्य। पारसमनी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डेनी और मनीष पंवार। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से अनिल कुमार खोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, फरुखाबादी, ये श्रोता हैं कासगंज उत्तर प्रदेश से। अगला SMS, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप। शीतल रेडियो श्रोता संघ
खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, उत्तम कुमार, श्वेता भगत, कीसु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और गुड्डी, पाकुड़ झारखंड से ये श्रोता जुड़े हैं। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा जुड़े हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, ये एसएमएस समय प्राप्त हुआ है। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस भवनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नशीर, बानूबी और बादशाह मुलानी और समस्त मुलानी परिवार। जमशेदपुर झारखंड से सुपाही, साही गांव से देवेंद्र, तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली, देवेन, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश की इन धमाकेदार गीत के साथ कार्यक्रम चांदनी रातें का रंगारंग आगाज। अगला SMS हमें प्राप्त हुआ है नई बस्ती गंज टंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, तैमूर और कलीम। मेरठ से हमारे श्रोता जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौट। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता हमसे जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हैं प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और तिलक राज अरोड़ा जी। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, सहानबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान। गाँव डाकखाना निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से हमारे नियमित श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। फाजिलका पंजाब से एक और हमारे नियमित श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी, विशाल, शालिनी, टिवानशी खेड़ा। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और विद्या कुमारी। गांव सीलीकला जिला यमुनानगर हरियाणा से जयसिंह काम्बोज, विजयंत सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरूडी। रमेश नाचानी, भारती, विनीत और मिथिल प्रताप, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से ये श्रोता हमसे जुड़े हैं। मारहवा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज, नवेद, सुहेल, अनस, यशफ और रशीद वारसी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय पीबी कुलथे। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

प्यार है हमारे श्रोताओं का, जो लगातार हम तक अपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद हम तक भेज रहे हैं। आपका प्यार सदा यूं ही आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ बना रहे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें, और ये गीत आपने सुना फिल्म रॉकी से। और आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत सुनते हैं इलाका फिल्म से। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू अशोकपुरी, सुशील बीकेपुरी, कैलाश नीलम रमा पाली, सुनील पाठक और वीकेपुरी विनोदपुरी। इसके साथ ही हमारे नियमित श्रोता हमसे जुड़े हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। अगला एसएमएस ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरामन और प्रणय और प्रतिभा गोंडाने। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज, आप श्रोता जुड़े हैं हमारे। गंज टुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर, लुबना और आलिया अंसारी। मलियान रठथना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जिव्यम, आदि जैन, अंश और भव्य जैन। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान यासीन, समसूल कमर राही गंज टुटवारा से। जवाहर नर्क दूर से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। गांव मुरादगढ़ से हमारे नियमित श्रोता हैं रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज। गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजू, गौरव, प्रवीण, युगम, बीरेन, मनकीरत और मनराज। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये सुपरहिट गीत फिल्म इलाका से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: श्रोतो, इन संदेशों के बाद आइए आपके प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं मोहरा फिल्म से ये गीत, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा वाघमारे, शशांक वाघमारे, जिला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार, नरगिस खातून, अगला SMS गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य, मेघा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु खुराना, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी जिंदल, आरजू हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और समस्त खुशदिल परिवार। चोहल्दा बागपत से संगे ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। गौंदर करनाल से हमारे नियमित श्रोता हम तक जुड़े हैं, किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी, सर्वजीत और राममूर्ति बुम्बक। कुरुक्षेत्र चांदनी रातें कार्यक्रम में ये SMS हम तक भेजा है मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना। शिवाजी नगर देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिराबाई और छकुली ताई खोबरखेड़े। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता जुड़े हैं, फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। जी हाँ श्रोताओं, अगला SMS विजय चौहान, इंदुकर, तेजस्विनी, माई इंदुकर, बेबी शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान श्रोता जुड़े हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म से ये सुपरहिट गीत।

श्रोताओ, मोहरा फिल्म के सुपरहिट गीत के बाद आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं सड़क फिल्म से ये गीत। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बता, नीलम बता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बता। जलालाबाद वेस्ट से हमारे श्रोता जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता। परभनी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रगेश, प्रतेश और समस्त संघई परिवार। गांव कलाना भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। गमहरिया जमशेदपुर से हमारे श्रोता जुड़े हैं रोहन, जायसवाल, आर्य, मुराहू, देवनंती, जायसवाल, विनय, सरोज, सुंदर, सुमन, अगले एसएमएस। ये हमारे श्रोता जुड़े हैं करणवीर हाउस कंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह चोड़ा, मनजीत, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। गांव उगाला जिला अंबाला से हमारे नियमित श्रोता हैं राजेश कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। कलानूर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांद

सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, राजकुमार बोड़ाना और शेख मूसा। विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये श्रोता हमसे जुड़े हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। शीतलनगर बीट शहर से किशन, सपकाल, आशा, सानिया, साईराज और विशाल। रविंद्र मोहनदास, आशा कुमारी, राघव और भानुप्रिया किशनगंज बिहार से। अगले एसएमएस सतेंद्र कुमार, चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। ये पंजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता जुड़े हैं। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। टोरोवाल नवासहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वानी। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिश, दानिश, अमन, राधा, नामदेव, गंजडंडवारा उत्तर प्रदेश से। सुधाकर राजे, प्रशांत कुमार, संचित, वायाल कुमार, प्रथमेश, सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली, सानवी, कल्पना, समस्त राजे जाधव, देशमुख और वायल परिवार ये हमसे जुड़े हैं कालेगांव जाफराबाद से। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं सड़क फिल्म से ये गीत।

जी हाँ श्रोताओ, आप सभी का प्यार हम तक पहुंच रहा है और कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अंतिम प्रस्तुति कार्यक्रम की तेरे नाम फिल्म से सुनने के ख्वाहिशमंद गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा सागर सीताराम कांगड़ा अंशिका बूत और तमन्ना कांगड़ा। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले दुखना सदफ जूही इमरान अहमद कापसहेड़ा दिल्ली से आमना नसरीन बागबान आसमापरी रबीना मंताशा आशु समीम अहमद राइन अखलाक अहमद और समस्त परिवार। जसपुर उत्तराखंड से सियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा रियाज रिफाकत माहिरा सदर बाजार कुरावाली से अनिल कुमार माया देवी राहुल विनीत और सोनम वर्मा जगदीश धाकर नायमा श्रीमती रंजूबाई युवराज और शिवांगी मध्यप्रदेश से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित लक्की तानिया डबवाली से हमारे श्रोता जुड़े हैं। अगला एसएमएस सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं तेरे नाम फिल्म से ये सुपरहिट गीत।

और श्रोताओ, तेरे नाम फिल्म के इस नकवे के साथ आज का चांदनी रातें कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
4: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open Tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isha Rani Barua. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।